0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।
2: भोर सुहानी कार्यक्रम में आप गीत सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चुक के साथ। दोस्तों, हर कोई जानता है कि सुबह के बाद रात और रात के बाद सुबह तो आएगी ही, जीवन भी इसी तरह चलता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख।

बस यही प्रेरणादायक गीत हमें आगे बढ़ने के लिए कहती रहती हैं, और ये समय भी यही कहता है कि आगे बढ़ती रहो।

दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कितनी बार ईश्वर को या किसी और को दोषी ठहराने लगते हैं अगर कुछ बुरा होता है तो। लेकिन ये सब तो हमारे प्रारब्ध में किए गए कर्मों का ही लेखा जोखा होता है, तो फिर क्यों घबरा जाते हैं।

0: विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naolekar.

सुबह की 10:05 दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ। और जी हाँ, नमस्ते, हेलो, आदाब का कारवां एक बार फिर से शुरू हो चुका है और मैं हूँ निशा, आज आपके साथ आपकी हम सफ़र। वैसे आज का साथ तो वैसे भी खूबसूरत है क्योंकि हम एक बार फिर से मिल रहे हैं ना, और इस साथ को और भी खूबसूरत कर रहा है आज का मौसम। जी हाँ, जो चिल्ला चिल्ला कर हमसे कह रहा है कि मॉनसून इज़ अराउंड द कॉर्नर। जी हाँ, ऑफिशियली मॉनसून की शुरुआत तो नहीं हुई है, लेकिन आज जो ठंडी हवाएं चल रही थी ना, क्या ही बताऊँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब जो गर्मी के दिन थे ना, ये ख़त्म हो चुके हैं और अब थोड़ी सी राहत मिलने वाली है। तो क्यों ना आज की प्लेलिस्ट को भी वैसे ही सजाया जाए, है ना। मौसम के अनुसार आगे बढ़ाऊँगी आज की प्लेलिस्ट और चाहूँगी कि आपका ही पूरा साथ रहे, यानी अगर कोई भूल चूक हो जाए और आपकी रिक्वेस्ट प्ले ना हो तो कोई बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज ना मेरी जो इतनी खूबसूरत प्लेलिस्ट है उसमें से मैं कुछ गाने आपको सुनवाऊँ। वेल, आप कहीं भी जाइए, मौसम इन्जॉय कीजिए और किसी भी काम को कीजिए, है ना, लेकिन मैं यही कहूँगी कि हमारे न्यूज़ ऑन एयर ऐप से जुड़े रहिए ताकि आपके साथ हम दिन भर रहें, हमारा साथ आपके साथ रहे और कुछ खूबसूरत गानों के साथ बात से बात बनती रहे। बात से बात बनाते हैं, यानी बहुत सारी बातें होने वाली हैं, बहुत सारे खूबसूरत गाने हैं जो मैं यहाँ पर प्ले करने वाली हूँ। और इस सेगमेंट में, जैसा कि आप जानते हैं, मैं कुछ हिंदी सॉन्ग्स तो प्ले करूँगी ही, साथ साथ में कुछ वेस्टर्न ट्रैक्स भी रहेंगे। एंड यस, नमस्ते, हेलो, आदाब की आज इस खूबसूरत म्यूजिकल जर्नी को स्टार्ट करते हैं बहुत ही खूबसूरत के साथ, जो है फ्रॉम द फिल्म प्यार जिंदगी है। जी हाँ, वाकई में प्यार तो जिंदगी है ना, अब आप माने चाहे ना माने, बट प्यार है तो जिंदगी, या फिर ये कह लीजिए कि जिंदगी प्यार है, अब आप कुछ भी समझ लीजिए। फिलहाल तो एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा सॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के

Well, it's 23 minutes past 10 by the studio clock. Dear listeners, you are tuned into Akashvani Hyderabad, FM Rainbow 101.9, and you're listening to Namaste Hello Adab, a show where music meets conversations. Well, I'm Nisha right here with you, and for the next few hours, I'll be playing a refreshing mix of Hindi and English hits. And of course, in between the music, we'll also have some heartwarming conversations. And you know what, friends? I truly believe that it's these heart-touching conversations and soulful songs that can bring us a little closer to ourselves, even on the busiest days. कभी कभी यूं होता है ना कि बस किसी सॉन्ग के कुछ लिरिक्स काफी होते हैं हमारा मूड रिफ्रेश करने के लिए या फिर हमें जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का मौका देने के लिए. कभी कोई सॉन्ग हमें हमारी पुरानी यादों की तरफ बस खींच ले या चला जाता है तो कभी किसी सॉन्ग को सुनकर ये एहसास होता है कि प्यार और प्यार से निभाए गए रिश्ते कितने खूबसूरत होते हैं ना. सो wherever you right now, maybe going to work, traveling, working, relaxing at home, or maybe just procrastinating a little instead of finishing that one task, I hope this show feels like a comforting companion to you and might add a little moment of peace in your busy routine. To bas aane wale kuch palon tak stress ko thoda side mein rakhiye aur music aur conversations ke is khoobsurat safar ka hissa baniye with me Nisha and Malvika only on Akashvani Hyderabad FM Rainbow 101.9. aur ji ha, bas Nisha aur Malvika hi यहाँ पर नहीं है, आप भी हैं हमारे साथ. तो जी हाँ, हमारे साथ हमारे कुछ लिसनर्स भी हैं. और लिसनर्स की बात करें तो हमारे साथ हैं सर्वर अली जी जो लिखते हैं गुड मॉर्निंग. तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. एंड यहाँ पर हमारे साथ हैं महेश फ्रॉम बालानगर दक्षिण टी कॉर्नर. ये लिखते हैं हाय गुड मॉर्निंग निशा जी. तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. और मालविका की तरफ से भी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. एंड ये कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद आपको हमारी याद आई. तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपकी याद हमेशा आती रहती है. बट वो क्या है ना कि आज दिन काफ़ी सुहाना था तो मैंने सोचा चलो आज ही चलते हैं और आपसे अच्छी सी मुलाकात करते हैं इस खूबसूरत से दिन के साथ. तो जी हाँ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत सी म्यूज़िकल जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आपको लिए चलते हैं बहुत ही खूबसूरत से सॉन्ग के साथ. और क्योंकि मैंने वादा किया है कि आज मौसम के हिसाब से सॉन्ग्स प्ले होंगे तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो है फ्रॉम द फिल्म प्यार तो होना ही था. एंड इस सॉन्ग की बात करें तो बस यही कहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत और आपके इस वेदर के हिसाब से ये सॉन्ग बिल्कुल फिट बैठता है. तो सुनते रहिए, ये है FM Rainbow 101.9. स्टे ट्यून्ड.

दोस्तों, कभी-कभी हम सोचते हैं कि लाइफ परफेक्ट होने के बाद ही हम खुश रहेंगे, लेकिन सच तो ये बात है कि लाइफ कभी परफेक्ट ही नहीं होती। खुशी उन छोटी-छोटी बातों में होती है जो हम रोज़ इग्नोर कर देते हैं, जैसे सुबह की गर्म चाय, माँ की आवाज़, किसी दोस्त का अचानक से आया हुआ मैसेज, या फिर आपका फेवरेट गाना रेडियो पर बजना। इसी के साथ जापान में एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं वाबी साबी। इट मीन्स अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ थिंग्स दैट आर इम्परफेक्ट, इम्परमनेंट एंड इनकम्प्लीट। इन शॉर्ट, आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, थोड़े खट्टे, थोड़े मीठे, बिल्कुल आम के जैसे। और दोस्तों, बस लव योर इम्परफेक्शंस। आप खुद में ही बहुत ही खूबसूरत हो, और इसी खूबसूरती के नाम अगला गाना आपके लिए।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Well, it's 46 minutes past 10 by the studio clock. Dear listeners, you are tuned into Akashvani Hyderabad, FM Rainbow 101.9. A very, very good morning. And जी हाँ, ये है नमस्ते, हेलो, आदाब की खूबसूरत सी म्यूजिकल जर्नी जिसके साथ आप हमारे हम सफर बने हुए हैं इस खूबसूरत से मौसम में. और दोस्तों, अगर हम अभी के ग्लोबल सिचुएशन को देखें ना, तो दुनिया के कई देशों में फ्यूल क्राइसिस देखने को मिल रहा है. लाइक पेट्रोल और डीजल का प्राइसिस भी बढ़ रहा है और इसका असर हमारी डेली लाइफ पर भी साफ दिखाई दे रहा है. हालांकि अब बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो रोज़ 10, 15 या 20 किलोमीटर्स ट्रैवल करके ऑफिस पहुंचते हैं. और हैदराबाद जैसे बिजी सिटी में डेली कम्यूट कभी कभी बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है. ट्रैफिक, लॉन्ग वेटिंग, फ्यूल एक्सपेंस, स्ट्रेस, ये सब हमारी रूटीन लाइफ के पार्ट बन

चुके हैं कहीं ना कहीं। वैसे आज तो थोड़ी बहुत राहत मिल रही है ना, अगर कल की ही बात कर लें तो इतनी सारी गर्मी और उसके बावजूद हम ट्रैफिक में बेचैन है ना, एक लंबी सी क्यू में खड़े हुए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हर प्रॉब्लम का ना एक सोल्यूशन होता है, और शायद इस सिचुएशन का एक सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है कार पूलिंग, जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, यानी किसी राइड को शेयर करना। सिंपल सी बात है, अगर सेम रूट पर जाने वाले 3 या 4 लोग एक ही कार में ट्रैवल करें तो ना सिर्फ फ्यूल बचता है बल्कि ट्रैफिक और पोल्यूशन भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकता है। और ऑनेस्टली फ़ायदा सिर्फ एनवायरनमेंट को नहीं होता, हम लोगों को भी होता है, बिकॉज व्हेन यू शेयर अ राइड यू ऑल्सो शेयर द फ्यूल एक्सपेंस, कैब फेयर, पार्किंग स्ट्रेस एंड इवन द ट्रैवलिंग बोर्डम समटाइम्स। इमेजिन कीजिए, एक ही ऑफिस में काम करने वाले कुलीग्स या सेम लोकेलिटी में रहने वाले लोग अगर साथ में कम्यूट करें तो रोड्स पर व्हीकल्स कम होंगे और ट्रैवलिंग भी थोड़ा अफोर्डेबल हो जाएगा। हैदराबाद के आईटी कॉरिडोर्स जैसे हाईटेक सिटी, गढ़चिरौली और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी कई लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स और राइड शेयरिंग एप्स के थ्रू कार पूलिंग ट्राई कर रहे हैं, एंड स्लोली पीपल आर रियलाइजिंग दैट दिस इज नॉट जस्ट अ कन्वीनियंस, इट्स बिकमिंग अ नेसेसिटी। लेकिन दोस्तों, अवेयरनेस अभी भी बहुत ज़रूरी है। कंपनीज चाहें तो अपने एम्प्लॉयज़ को कार पूलिंग के लिए इनकरेज कर सकती है, अपार्टमेंट्स और गेटेड कम्युनिटीज़ राइड शेयरिंग ग्रुप्स बना सकते हैं, और हम सब भी वीक में कुछ दिन कार पूलिंग अडॉप्ट कर सकते हैं इफ़ पॉसिबल, क्योंकि ये छोटे छोटे चेंजेस ही बड़े डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप ऑफिस के लिए निकलें, बस एक बार खुद से पूछिए, कैन आई शेयर दिस राइड विद समवन, क्योंकि एक शेयर्ड राइड सिर्फ फ्यूल नहीं बचाती बल्कि हमारे आने वाले कल को भी थोड़ा बेहतर बनाती है। तो जी हाँ, इसी आने वाले बेहतर कल के लिए हमें बहुत सारी कोशिश करते रहनी है, और मैं चाहूँगी कि वो कोशिशें आप करते रहें, चाहे थोड़ा थोड़ा करके ही सही। वेल दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं नमस्ते हेलो आदाब के साथ और आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9, और आज हम हैं आपके साथ, यानी मैं और मालविका आपके साथ है, और हम प्ले करेंगे कुछ खूबसूरत सॉन्ग्स। फिलहाल के लिए एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म सलाम ए इश्क। आपको बता दें कि सुबह के 11 बजे आप सुन पाएंगे न्यूज़ हेडलाइंस।

Well, it's 55 minutes past 10 by the studio clock. Dear listeners, you are tuned to Akashvani Hyderabad FM Rainbow 101.9, listening to Namaste, Hello Adab, a beautiful musical journey, and I'm Nisha right here with you, playing some amazing mix of Hindi and Western hits. And this was Salaam Ishq, from the film Salaam Ishq, Dil Kya Kare. Well, आपको बता दें कि सुबह के 11 बजे आप सुन पाएंगे न्यूज़ हेडलाइंस, और उसके बाद एक बार फिर से हम हाजिर रहेंगे विद नमस्ते हेलो आदाब, एंड आई विल बी प्लेइंग अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड सम वेस्टर्न ट्रैक्स फॉर यू. तो अभी जो वक्त हमारे पास है, इसके दरमियान एक और खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं. सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9. जी हाँ, काफ़ी प्यारा सा वेदर है, इस वेदर को एंजॉय कीजिए, इन खूबसूरत गानों को एंजॉय कीजिए, और सुनते रहिए FM रेनबो 101.9.

A very, very good morning, dear listeners. You're tuned into Akashvani Hyderabad, FM Rainbow 101.9. Well, it's 5 minutes past 11 by the studio clock. और एक बार फिर से हम हाजिर हैं उन्हीं बेहतरीन नगमों के साथ, जिनके साथ होने से कोई भी काम आसान लगने लगता है, क्योंकि ये म्यूज़िक ही तो हैं दोस्तों जो हमें हर पल से जोड़े रखते हैं. और अगर आपको हमसे हर पल जुड़े रहना है ना, तो डाउनलोड कीजिए हमारा न्यूज़ ऑन एयर ऐप, और उस ऐप के ज़रिए आप FM रेनबो हैदराबाद के साथ बने रहिए और सुनते रहिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट, यानी थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ी इन्फॉर्मेशन. वेल, मैं हूँ निशा, आज आपकी हम सफर खूबसूरत म्यूजिकल जर्नी में, जिसे कहते हैं नमस्ते, हेलो, आदाब. तो जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी प्रिय श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, एंड विशिंग यू ऑल अ पीसफुल एंड रिफ्रेशिंग मॉर्निंग अहेड. वेल, इससे पहले कि कुछ और बातें हों, चलिए फिलहाल के लिए आपको लिए चलते हैं एक और बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ. और क्योंकि मैंने कहा है कि इस मौसम के हिसाब से मैं आपके लिए कुछ सॉन्ग्स प्ले करने वाली हूँ, जिन्हें सुनकर आप इस मौसम को इन्जॉय भी कर पाएँ कुछ सॉन्ग्स. तो यस, एक ऐसा ही गाना मेरे जहन में है जो मैं अभी आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ. दिस सॉन्ग इज फ्रॉम द फिल्म कसूर. सुनते रहिए, ये है FM रेनबो 101.9, और इसी के साथ समय हो चला है 11:06.

0: అద్భుతమైన 444 రోజుల డిపాజిట్ పథకం.
1: ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేటుతో వృద్ధులకు 7.10% మరియు వయోవృద్ధులకు అదనంగా 0.25% వడ్డీ రేటు.
0: మరిన్ని వివరాలకు మీ దగ్గరలో ఉన్న యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్రాంచ్ ను సంప్రదించండి.
2: वेलकम बैक दोस्तों. हालांकि आज गर्मी तो बहुत कम है, लेकिन गर्मी का हाल तो आप सब ही जानते हैं, है ना. तो कुछ जगहों पर टेम्परेचर जो है 50 डिग्री से भी ज़्यादा पहुंच गया है, और ऐसे में एसी भी कभी कभी हार मान जाता है ना. लेकिन राजस्थान के जोधपुर में एक बहुत ही कमाल का आइडिया सामने आया है, और वो है कि वहाँ का एक स्पेशल कम्युनिटी शेल्टर बनाया गया है स्पेशली डिलीवरी ड्राइवर्स और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए. जी हाँ, जिन्हें दिन भर इस तेज़ धूप में काम करना पड़ता है, उनके लिए ये बनाया गया है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शेल्टर बिना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किए अंदर का टेम्परेचर लगभग बाहर के टेम्परेचर से कंपेयर किए तो 8 डिग्री तक ठंडा रखता है. कैसे? वो है एक स्पेशल रिफ्लेक्टिव पेंट के द्वारा. जी हाँ, रूफ पर स्पेशल रिफ्लेक्टिव पेंट लगाया जाता है जो धूप को बाउंस बैक करता है. वॉल्स पे ट्रेडिशनल खुस मैट्स लगाए जाते हैं, और जिन पर हवा गुजरते ही नेचुरल कूलिंग फील होती है. और छोटे सोलर पैनल्स, फैंस और वाटर मिस्टर्स चलाते हैं. मतलब दोस्तों, कभी कभी फ्यूचर का सोल्यूशन हमारे पुराने देसी आइडियाज़ में ही छुपा होता है. सिंपल, सस्टेनेबल और सच में ब्रिलियंट. और अगर हो सके तो आप भी आजमा के देखिए.
3: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9, और इसी के साथ सुबह की 11:15 सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, जो कि एक खूबसूरत म्यूजिकल जर्नी है. और यहाँ हम आपके लिए प्ले करेंगे कुछ खूबसूरत गाने, मिक्स ऑफ हिंदी एंड वेस्टर्न हिट्स. और जो अगला गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, दिस इज़ टेक माई ब्रेथ अवे बाई बर्लिन. तो सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9.

0: సేవలకు సంబంధించిన హక్కులు 1987 సెక్షన్ 12 లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ యాక్ట్ ప్రకారం దేశ పౌరులు ఎటువంటి ఫీజు లేకుండా న్యాయ సహాయాన్ని న్యాయబంధు మొబైల్ యాప్ మరియు www.probono-dog.in ద్వారా పొందవచ్చు.
1: FM Rainbow 101.9. सुबह के 11:21 दोस्तों आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ, सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, एक खूबसूरत म्यूज़िकल जर्नी जहां पर ऑफ कोर्स बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग्स मैंने आपके लिए प्ले किए, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे. और जैसा कि हम हर रोज़ यहां पर रहते और ढेर सारी बातें करते हैं, साथ में होते कुछ सॉन्ग्स, तो फिलहाल अगर बातों की बात करें तो आपसे बस यही कहूँगी कि दोस्तों आज हम चाहें इतना ही आगे क्यों ना बढ़ चुके हों, लेकिन हमें हमेशा अपने इतिहास की तरफ एक बार पीछे मुड़कर ज़रूर देखना चाहिए. आज चाहे हमारे हर तरफ बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल जाती है, एक फिंगर टिप पर हमें न्यूज़ मिल जाती है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब कोई भी चेंज लाना इतना आसान नहीं था. किसी भी बदलाव के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाना पड़ता था और शिक्षा के माध्यम भी बहुत कम थे, अवेयरनेस की कमी थी और सोसाइटी में कई ऐसी चीज़ें हो रही थी जो शायद सही नहीं थी लेकिन फिर भी चल रही थी क्योंकि लोगों के पास जानकारी कम थी, अवेयरनेस कम थी. और तब कुछ ऐसे लोग सामने आए, कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स जिन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम्स को देखा नहीं बल्कि उन्हें बदलने का जिम्मा भी उठाया, जिन्होंने सोसाइटी को एक नई सोच देने का फैसला किया, एक बेटर फ्यूचर के लिए आवाज़ उठाई. और ऐसे ही सोशल रिफॉर्मर्स में से एक थे आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में जन्मे महान समाज सुधारक और लेखक कंदुकुरी वीरसलिंगम, जिन्हें हम जानते हैं एज फादर ऑफ द तेलुगु रेनासेंस मूवमेंट, क्योंकि ये वही इंसान हैं जिन्होंने एक ऐसे समय में समाज के लिए आवाज़ उठाई जब बदलाव की ज़रूरत तो थी लेकिन हिम्मत बहुत कम लोग दिखाते थे. और क्योंकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ तेलुगु लिटरेचर तक ही सीमित नहीं था बल्कि वुमेन एजुकेशन, सोशल इक्वालिटी और विडो रिमैरिज जैसे मुद्दों में भी उनका योगदान है, इसीलिए उन्हें राजा राम मोहन रॉय ऑफ आंध्र

प्रदेश के रूप में भी याद किया जाता है। वैसे दोस्तों, आज इनकी डेथ एनिवर्सरी ने एक बार फिर से हमें मौका दिया है कि हम एक बार फिर से इतिहास के उन पन्नों को पढ़ें जहां उनका जिक्र है। आपको बता दें कि कंदुकुरी वीरेसलिंगम एक ब्रिलियंट राइटर भी थे। उन्होंने तेलुगु लिटरेचर में मॉडर्न थिंकिंग और सोशल अवेयरनेस को इंट्रोड्यूस किया। एसेज, ड्रामाज, नॉवेल्स और आर्टिकल्स के थ्रू सोसाइटी को एजुकेट करने की कोशिश की। उनकी फेमस वर्क राजशेखरा चरित्रमु तेलुगु लिटरेचर की अर्लीस्ट सोशल नॉवेल्स में से एक मानी जाती है और उन्होंने लिटरेचर को सोसाइटी को जागरूक करने का एक पावरफुल मीडियम बनाया जिसने आंध्र प्रदेश में सोशल अवेयरनेस, वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन की एक नई रोशनी जगाई। और शायद इसीलिए आज भी उनका नाम सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में नहीं बल्कि रेस्पेक्ट और इंस्पिरेशन के साथ याद किया जाता है। तो जी हाँ, इन्हें याद करते हुए इन्हें करते हैं शत शत नमन। सुनते रहिए, ये है एफएम रेनबो 101.9। आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब और इसी के साथ सुबह के 11:24 मैं हूं निशा आपके साथ और प्ले कर रही हूं कुछ खूबसूरत गाने, अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड वेस्टर्न हिट्स और उम्मीद है कि आपको ये गाने पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग की तरफ, फ्रॉम द फिल्म राजी।

और आज भी जब भी हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं तो ये सॉन्ग हमारी प्लेलिस्ट में तो होता ही है, और हो भी क्यों ना, गाने के लिरिक्स भी तो काफ़ी कैची है। एज द सॉन्ग ब्यूटिफुली टॉक्स अबाउट अट्रैक्शन, अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस एंड हाउ समटाइम्स यू नो लव फाइंड्स यू इन द मोस्ट कैजुअल प्लेसेस लाइक मे बी अ बार, अ कॉन्वर्सेशन या फिर एक सिंपल मोमेंट दैट सडनली फील्स स्पेशल। एंड डिड यू नो शेप ऑफ यू वॉज एक्चुअली नॉट ओरिजिनली रिटन फॉर एड शीरन हिमसेल्फ, इट वॉज रिपोर्टेडली कंसिडर्ड फॉर अनदर artist in the beginning, but thankfully Ed Sheeran decided to keep it. And honestly friends, imagine this song in anyone else's voice, quite difficult, right? Well, is song ne release hote hi kafi popularity bhi gain ki thi. The song broke records globally, becoming one of the most streamed songs ever, aur aaj bhi iska charm bilkul kam nahi hua hai, because some songs don't just trend, they become timeless favorites. Aur aise hi kuch aur songs aaj honge is musical journey ka hissa. And इसी नोट पर लेट्स कीप दिस म्यूजिकल जर्नी गोइंग, क्योंकि यहाँ हर मेलोडी के साथ जुड़ती है कुछ खूबसूरत यादें, और यादों की बात करें तो बातें याद आ जाती हैं, है ना, और बातों की बात करें तो आप याद आ जाते हैं। जी हाँ, हमारे साथ हमारे कुछ लिसनर्स भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं विष्णु जी फ्रॉम एयरपोर्ट बेगमपेट, लिखते हैं अ वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार निशा जी, तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, एंड ही वॉन्ट्स टू लिसन टू अ सॉन्ग। ये हैं अलीशा चिनाय की आवाज़ में जूबी जूबी, तो मैं कोशिश करूँगी। एंड एक और सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, शेरी शेरी लेडी इफ़ पॉसिबल, तो जी हाँ इन दोनों ही सॉन्ग्स में मैं जो प्ले कर पाऊँ आपके लिए प्ले करूँगी। एंड यस, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से सॉन्ग के साथ, एंड दिस सॉन्ग इज़ फ्रॉम द फिल्म दहक। जैसा कि मौसम है खूबसूरत सा, है ना, इतनी सारी गर्मी के बाद हमें याद आ चुकी है कि अरे मानसून आने ही वाला है, तो इस मौसम के नाम एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते रहिए एफएम रेनबो 101.9।

So till we receive some lovely messages from you, let's enjoy some more beautiful songs. और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो समय है वो यही कहता है कि और आई थिंक एक आध सॉन्ग्स की तरफ हम चल सकते हैं इससे पहले कि हम न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ चलें, क्योंकि दोपहर के 12 बजे आप सुन पाएंगे न्यूज़ हेडलाइंस, दोपहर के 12 बजे समाचार हिंदी में और 12:05 पर अंग्रेज़ी में समाचार. उस और इसके पहले जो वक्त है हमारे पास दोस्तों, उसमें एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आपके लिए प्ले करने वाली हूँ. एंड दिस वंस अर्ज़ किया है अनुभव जैन की आवाज़ में, अनुप जैन की आवाज़ में. बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, सुनते रहिए ये है FM रेनबो 101.9 और आपसे जुड़ेंगे एक बार फिर से न्यूज़ के बाद. सुनते रहिए.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआई प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज टोरंटो में कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए आर्थिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों पर भी जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज महाराष्ट्र के अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर, गढ़चिरौली और अकोला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास अनिवार्य है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में

0: వేగంగా పెంచుకోవడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఎల్ఐసి ఇండెక్స్ ప్లస్ నెలకి కేవలం 2,500 రూపాయల ప్రీమియం తో ఫ్లెక్సీ స్మార్ట్ గ్రోత్ ఫండ్, ఇది నిఫ్టీ 50 స్టాక్స్ లో పెట్టుబడి పెడుతుంది. లేదా ఫ్లెక్సీ గ్రోత్ ఫండ్, ఇది నిఫ్టీ 100 పై దృష్టి సారించి అభివృద్ధిని లక్ష్యంగా ఉంచుతుంది. ఎల్ఐసి హర్ పల్ ఆప్కే సాథ్.
1: Well, it's 11 minutes past 12 by the studio clock. Dear listeners, you are tuned into Akashwani Hyderabad FM Rainbow 101.9. Aur ji haan, jaisa ki aap jante hain ki ek baar phir se hum judne wale hain Namaste Hello Aadab ke saath, jo ki ek khoobsurat musical journey hai. Aur ye musical journey sirf music ko hi apne saath nahi lekar aati hai, bahut sari baatein bhi hum karte hain yahan par. Aur इस सेगमेंट में और भी खास बातें होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में भी बात करने वाले हैं. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे इशू की जो सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि दुनिया भर में एक सीरियस हेल्थ कंसर्न बन चुका है. हर साल 31 मई को दुनिया भर में ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे, और इस साल यानी 2026 का थीम है अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन. मतलब टोबैको और निकोटीन प्रोडक्ट्स को जो अट्रैक्टिव या कूल दिखाया जाता है उसके पीछे की रियलिटी को समझना और समझाना. जी हाँ, और सिगरेट या फिर टोबैको हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है, ये सारी ही चीज़ें हमारी हेल्थ पर कितना गंदा असर डालती है, इसके बारे में बहुत सारी आज बातें करने वाले हैं. कैसे इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए इसके बारे में भी बात करेंगे. और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं रिनाउंड कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष चौहान जी. तो इनसे काफ़ी सारी बातें करेंगे और ये आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं. तो जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन एफएम रेनबो 101.9. हम इस खास बातचीत के साथ अब से थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस खूबसूरत सी म्यूजिकल जर्नी में एक प्यारा सा सॉन्ग आपके लिए. ये सॉन्ग है फ्रॉम द फिल्म तनु वेड्स मनु.

0: ఎలాంటి రుసుము లేకుండానే న్యాయ సలహాలు టెలీలా యాప్ www.tele-law.in వెబ్సైట్ లేదా టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 14454 ద్వారా పొందవచ్చు.
1: FM Rainbow 101.9.
2: दोपहर के 12:18 दोस्तों आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ और शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब. और इस म्यूज़िकल जर्नी में थोड़ी सी अब बातें होने वाली हैं. जी हाँ, रुख थोड़ा बदलते हैं, म्यूज़िक से निकलकर अब बातों की तरफ चलेंगे. और ये खास बातें इसलिए भी होने वाली है क्योंकि आज हमारे

0: हमारे स्टूडियोज में कोई खास हाजिर है, ये है रिनाउंड कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष चौहान जी, और ये यहाँ पर उपस्थित हैं क्योंकि हर साल हम 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाते हैं, और इस साल भी हम इसे एक स्पेशल थीम के साथ मना रहे हैं, और इसी बारे में बहुत सारी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्ते एंड थैंक यू, आपने अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पर आए, तो थैंक यू सो मच।
1: थैंक्स अ लॉट, इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर कि आज हम आपके पास आए हैं और आपके इस माध्यम से सैकड़ों हजारों लोगों से हम बातचीत कर पाएंगे, और वो भी स्पेशल टॉपिक पे, नो टोबैको डे।
0: जी हाँ, तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक जो क्वेश्चन, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है टोबैको के बारे में, वो ये है कि टोबैको किस तरह से खतरनाक है। ऑब्वियसली लोग जानते हैं, अवेयर हैं कि ये खतरनाक है, बट स्टिल उन्हें एक बार फिर से ये रिमाइंडर देना कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये बहुत ज़रूरी रहेगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
1: नंबर वन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड जो है वो है हार्ट अटैक
0: जी,
1: एंड हार्ट अटैक का मेन कारण है स्मोकिंग एंड टोबैको, और नंबर वन कॉज ऑफ द डेथ वो पूरे वर्ल्ड में इंडिया में वही है। नंबर टू फालिज है, नंबर थ्री कैंसर है, नंबर फोर COPD है, और इन सब का सीधे सीधे टोबैको से कनेक्ट है
0: जी।
1: तो अगर आपको जिंदगी को हेलो बोलना है तो टोबैको को नमस्ते बोलना है, उससे दूर रहना है।
0: जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने सुना डॉक्टर साहब की बात कि ज़िंदगी को हेलो बोलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी खुलकर आता है कि टोबैको कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फैलाई जा सके?
1: सही दिशा में अपने बच्चों को फोकस करने के लिए और गाइडेंस देने से ही ये काम हो पाएगा। इसमें गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी को अपना हाथ और योगदान देना है, जैसे कि यहाँ पे शुरू हुआ है आजकल कि स्कूल्स के पास किसी एलियन परचेज नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इसके बारे में डिस्कशन करना जरूरी है। तो 31 मई से पहले मैं ना जाने कितने स्कूल्स में जाऊंगा, वहां पे इस बारे में डिस्कशन दूंगा, क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है, जो यंगिस्तानी है, वो लोग पीयर प्रेशर में आके टीवी में देख के, मूवीज में देख करके थोड़ा सा ऐसे प्रभावित होकर ट्रायल करते हैं, एंड वो फिर एक वो दलदल सा बच जाता है, एक बार जब घुस जाते हैं फिर निकलना कठिन हो जाता है। तो टोबैको को यू हैव टू से फर्स्ट टाइम सेल्फ यू हैव टू से नो, एंड उसके बाद यू हैव टू रेगुलरली यू हैव टू से नो। एक अच्छी जिंदगी के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए हमको जिंदगी में नो बोलना बहुत
0: बहुत
1: जरूरी है, सीखना होगा। नो टू स्मोकिंग, नो टू अल्कोहल, नो टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नो टू स्ट्रेस, इन चार पांच चीजों को नो बोलिए और लंबी खिलखिलाती जिंदगी आपके साथ आपके सामने रहेगी।
0: जी हाँ, जैसा कि आपने सुना, अगर आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो आपको टोबैको से तो कोसों दूर रहने की ज़रूरत है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है, और उन्हीं में से एक चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट। और कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, एन्जाइटी है, वो भी एक कारण हो सकता है कि हम टोबैको को अपनी ज़िंदगी में एक यू नो परमानेंट स्पेस दे देते हैं। तो इस बारे में डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट लोग कैसे कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा टोबैको से?
1: पहले मैं एक चीज बोल दूं, स्ट्रेस अच्छा होता है।
0: अच्छा,
1: स्ट्रेस को मैनेज ना कर पाना गलत होता है।
0: अच्छा, जी जी बिल्कुल।
1: तो चिंता चिता समान होती है, तो चिंता से आपको दूर रहना है
0: जी।
1: उसको कैसे मैनेज करना है, पहली बात आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। अगर आप अपने जो भी धर्मशास्त्र है उनको पढ़िए, क्योंकि हर एक धर्मशास्त्र आपको मानसिक शांति देगा, विच इज इम्पोर्टेंट। तो आपको चिंता चिता समान मान करके स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। फिर एक अच्छी संगति होनी बहुत जरूरी है
0: जी।
1: आपने हमने वो मुन्ना भाई MBBS देखी है, सुनी है
0: जी, जी।
1: तो वो जादू की झप्पी देने वाला कोई परिवार में सदस्य होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए
0: जी।
1: मेरे बहुत एक काबिल दोस्त ने यही बोला है, अपने अपने थिएटर के बाहर लिखा हुआ है। वो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, वो हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। उन्होंने क्या लिखा है अपने थिएटर के बाहर, ये लिखा हुआ है, जो दिल खोल लेते यारों के साथ, गौर फरमाइएगा,
0: हाँ जी,
1: जो दिल खोल लेते यारों के साथ न खोलना पड़ता औजारों के साथ।
0: वाह, क्या बात।
1: तो कोई ना कोई ऐसा आपका हम कदम हम सफर होना चाहिए जिनके आप खोल के बातें कर सकें,
0: हाँ जी, बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल।
1: जिनसे आप दिल की बातें कर सकेंगे, फिर आपको डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बाय एनी चांस अगर आपको कोई ऐसा फ्रेंड दोस्त ना मिले,
0: जी
1: आकाशवाणी सुन लीजिए,

0: आपकी स्ट्रेस अपने आप गायब हो जाएगा।
1: वाह क्या बात है। और यहाँ पर डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपका और वक्त लेना चाहूँगी, ना चाहते हुए भी, क्योंकि एक चीज़ जो मेरे मन में चल रही थी, एक क्वेश्चन, कि अक्सर ऐसा भी होता है कभी-कभी कि ऐसे फ्रेंड्स हो जाते हैं जो आपको यू नो प्रेशराइज़ करते हैं कि अगर हम टोबैको का सेवन कर रहे हैं या नशे का सेवन कर रहे हैं तो आप भी कर लो, यू नो ग्रुप में घुलने मिलने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो ऑफिस में कलीग्स होते हैं या बॉसेस होते हैं, पार्टीज होती है, तो वहाँ पर कुछ लोगों को प्रेशराइज किया जाता है कि आप लोगों में मिलजुल कर रहने के लिए भी आप नशे का सेवन करो, तो वहाँ पर एक स्ट्रिक्ट नो कैसे हम बोल सकते हैं?
0: नहीं, आई थिंक दैट क्लैरिटी आपको और मेरे को अपने बच्चों को शुरू से सिखानी पड़ेगी। मेरे
1: जी
0: बच्चे हैं, दे आर 18-20 ईयर्स ऑफ एज एंड वो जाते हैं बाहर दोस्तों से मिलने के लिए, तो वो हमको उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है।
1: जी
0: लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस विच यू मेक। मैं उनको बोलता हूँ ABC, ए इज़ ऑलमाइटी फर्स्ट, बी इज़ बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, सी इज़ चॉइसेस विच यू मेक। तो जिंदगी को चूज करना इज योर चॉइस,
1: जी
0: एंड आपको शुरू से, एंड कोई भी जो आपका अच्छा दोस्त होगा वो
1: जी
0: आपको प्रेशराइज नहीं करेगा,
1: जी
0: और जो अच्छे दोस्त की वही निशानी होगी जो आपको, हु नोज की वेयर इज हिज लिमिट्स, वो
1: बिल्कुल
0: लिमिट्स जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा उस लिमिट्स को पार करने की कोशिश कर रहा है,
1: जी
0: स्टे अवे फ्रॉम हिम और हर इज व्हाट आई वुड
1: जी
0: सजेस्ट।
1: जी
0: एंड
1: बिल्कुल
0: मैं तो, मतलब मैं यूपी का रहने वाला हूँ बट आई एम इन हैदराबाद फॉर मोर देन
1: जी
0: 20 ईयर्स। मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं,
1: जी
0: एंड
1: बिल्कुल
0: उनको आप
1: बिल्कुल सही
0: हंसते
1: बात है।
0: खिलखिलाते,
1: हाँ जी
0: नो कहने का भी एक स्टाइल होता है,
1: जी
0: हंसते खिलखिलाते नो बोलिए एंड आपको,
1: नको
0: हाँ फिर वो प्यार से नको बोल
1: जी
0: दीजिए तो
1: बस
0: वो मान जाएंगे।
1: बात खत्म। एंड लास्टली एक छोटा सा मैसेज हमारे यूथ्स के लिए, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर ऑफ द नेशन, तो एक छोटा सा मैसेज।
0: एक सिंपल सी चीज यही बताना चाहूंगा, हंसती खिलखिलाती जिंदगी के लिए आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए आपको ना बोलना बहुत जरूरी
1: जी
0: है। 9S को आपको ना बोलना है। नंबर 1 इज स्मोकिंग, नंबर 2 इज स्पिरिट्स अल्कोहल,
1: जी
0: नंबर 3 इज स्ट्रेस, सेल्फ मेडिकेशन, शुगर, सॉल्ट एंड
1: जी
0: स्पाइसेस, इन सारी चीजों से दूर रहिए।
1: जी
0: आप हंसते खिलखिलाते रहेंगे एंड डेफिनेटली 31 मई से पहले
1: जी
0: आप स्मोकिंग और टोबैको प्रोडक्ट से बिल्कुल दूर रहिए। उसके बारे में अपने दोस्तों को बताइए,
1: जी
0: क्योंकि जो सही दोस्त होता है, जो अच्छा दोस्त होता है, वो आपको बुरी चीज़ों से दूर रखेगा,
1: बिल्कुल
0: तभी तो आप और हम लंबा जिएंगे, हंसते खिलखिलाते जिएंगे। तो ये मेरा मैसेज है अपने यंगिस्तानी के लिए कि अच्छी आदतों को अपनाइए, आकाशवाणी सुनिए और लंबी जिंदगी जीने के साथ साथ भारत को एक नए आयाम तक ले जाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। तो लर्न टू से नो, दैट्स माय मैसेज टू एवरीबॉडी आउट हियर।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी के स्टूडियोज़ में आने के लिए, इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए हमारे लिसनर्स को। तो जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे रिनाउंड कंसल्टेंट, फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष चौहान जी। और ये खास बातचीत इसलिए हो रही थी क्योंकि आने वाले 31 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो जी हाँ, एक बात आप ध्यान रखिए कि वर्ल्ड नो टोबैको डे पर एक प्रॉमिस करें अपने आप से कि अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, हेल्दी चॉइसेस को इनकरेज करना है और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना है, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। जी हाँ, तो चलिए इसी के साथ नमस्ते हेलो आदाब की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, और क्योंकि क्योंकि ये एक म्यूजिकल जर्नी भी है, तो फिलहाल के लिए बढ़ेंगे एक खूबसूरत से सॉन्ग के साथ ही। एंड आई होप कि हमारे स्टूडियो में डॉक्टर आशीष चौहान जी भी उपस्थित हैं, तो उन्हें भी ये गाना पसंद आएगा और साथ में हमारे सभी लिसनर्स को। सो स्टे ट्यून, दिस इज FM रेनबो 101.9।

0: Rainbow 101.9.
1: दोस्तों, लाइफ में हर चीज़ का आंसर मिलना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी बस सफ़र एंजॉय करने में भी काफ़ी होता है। बिल्कुल रेडियो की तरह, है ना। पता नहीं अगला गाना क्या होगा, फिर भी हम सुनते रहते हैं और इसका मज़ा लेते हैं। और दोस्तों, आज बारिश ने हैदराबाद को गर्मी से छोटा सा ब्रेक दिया है, और सच में जैसे मन को ठंडक मिली हो। मौसम भी बहुत ही सुहाना लग रहा है। तो इसी सुनहरे मौसम को मनाते हुए अगला गाना आपके लिए, और मैं हूँ आरजे मालविका आरजे निशा के साथ, और ये है आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो।

Well, that was the beautiful song Chand Mera Dil. Music था सचिन जिगर का, सिंगर फहीम अब्दुल्ला और गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के. और ये जो खूबसूरत सा सॉन्ग है ये है फ्रॉम द न्यूली रिलीज्ड मूवी चांद मेरा दिल. तो जी हाँ, अगर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस वीकेंड थिएटर में कौन सी फिल्म देखी जाए, देन लेट मी टेल यू अबाउट द रिसेंटली रिलीज मूवी चांद मेरा दिल स्टारिंग अनन्या पांडे एंड लक्ष्य. दिस फिल्म ट्राइज टू ब्रिंग अस अ मॉडर्न डे लव स्टोरी, लेकिन सिर्फ रोमांस नहीं, responsibilities, misunderstandings,

लव स्टोरी, लेकिन सिर्फ रोमांस नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इमोशनल बैगेज और अडल्टहुड की रियलिटीज भी इसमें देखने को मिलती है. द स्टोरी फॉलोज टू यंग लवर्स हुज रिलेशनशिप चेंजेस एज लाइफ सडनली पुशेज देम इनटू बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और अगर परफॉर्मेंसेज की बात करें तो लक्ष्य की परफॉर्मेंस आपने देखी है, किल, जो कि एक्शन पैक्ड मूवी थी, उसमें लक्ष्य ने काफ़ी एक्टिंग अच्छी की थी. और देन बैड्स ऑफ बॉलीवुड, जिसमें अगेन उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की थी. और अब ये इनकी तीसरी फिल्म, एंड लक्ष्य ऑनेस्टली ब्रिंग्स सिंसियरिटी टू हिज रोल एंड इमोशनली कई मोमेंट्स में कनेक्ट भी करवाते हैं. देन अनन्या पांडे की बात करें तो शी हैज ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग इमोशनल डेप्थ, स्पेशली इन इंटेंस सीन्स. हालांकि कुछ मोमेंट्स ऐसे लगते हैं जहाँ केमिस्ट्री थोड़ी स्ट्रांगर हो सकती थी, और क्रिटिक्स का भी यही कहना है क्योंकि ऑडियंसेस हैव हैड मिक्स्ड रिएक्शंस, सम कनेक्टेड विद इमोशंस एंड रिलेटेबिलिटी, व्हाइल अदर्स फेल्ट द स्टोरी टेलिंग बिकेम ओवर ड्रामेटिक एट प्लेसेस. और जी हाँ, ओवरऑल अगर इस फिल्म की बात करें तो आपको इमोशनल लव स्टोरीज, रिलेशनशिप ड्रामास और मॉडर्न रोमांस वाली फिल्म अगर पसंद है, देन चांद मेरा दिल माइट बी वर्थ अ वॉच फॉर यू. लेकिन अगर आप फास्ट पेस स्टोरी टेलिंग या लाइट एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं, देन शायद एक्सपेक्टेशंस आपको थोड़ी बैलेंस्ड रखनी पड़ेगी. तो ओवरऑल अगर मेरी रेटिंग की बात करें तो माई रेटिंग फॉर चांद मेरा दिल वुड बी 3 out of 5 stars, क्योंकि कहीं कहीं पर obviously ये फिल्म इमोशनल है, विजुअली प्लीजिंग है, बट दिस फिल्म इज एक्चुअली नॉट विदाउट फ्लॉज. तो जी हाँ, अगर फिर भी अगर आप रोमांस पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म देख सकते हैं, एंड थोड़ा ट्विस्ट भी आपको इस रोमांस में देखने को मिलेगा. तो जी हाँ, थिएटर्स में ये फिल्म अभी लगी हुई है, और अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, चांद मेरा दिल, स्टारिंग अनन्या पांडे एंड लक्ष्य. वेल, शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ, और इस खूबसूरत सी म्यूजिकल जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे एक और प्यारे से सॉन्ग के साथ, एंड दिस इज डोंट वरी बी हैप्पी बाय बॉबी मैकफेरिन. सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9. वेल, यहाँ पर समय हमसे यही कह रहा है कि थोड़ी देर में हम जुड़ेंगे हेलो रेनबो के साथ, और क्योंकि हम हेलो रेनबो के साथ जुड़ते हैं दोपहर के 1 बजे, इसीलिए क्यों ना सॉन्ग को यू नो चेंज किया जाए, क्योंकि यहाँ पर वक्त थोड़ा सा कम है. सो आई विल बी प्लेइंग टेक मी होम कंट्री रोड्स बाय जॉन डेनवर. स्टे ट्यून्ड.

दोपहर के 1:01 दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ। और जी हाँ, दोपहर के 1 बज चुके हैं और ये वक्त हमसे यही कहता है कि हम बिल्कुल तैयार हैं हेलो रेनबो के साथ जुड़ने के लिए। तो जी हाँ, हेलो रेनबो एक ऐसा सफ़र है जहाँ पर आप हमसे जुड़ते हैं, आपके कॉल्स के सहारे हम आपसे ढेर सारी बात करते हैं। और सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0402323 0030, 0402323 4821 और 0402970471। तो आप सभी जो हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा यानी निशा का प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपको बता दूं कि आज सिर्फ मैं स्टूडियो में नहीं हूं, आज मेरे साथ मालविका भी हैं, तो इनसे भी आपकी ढेर सारी बातें होने वाली हैं क्योंकि इनके पास भी कुछ सवाल हैं आपके लिए और मेरे पास भी आपके लिए एक सवाल है। तो जी हाँ, आज का एक छोटा सा सवाल आप सभी लिसनर्स के लिए यही है कि ऐसी कौन सी बात है जिस पर आपको खुद पर गर्व महसूस होता है। जी हाँ, दूसरों पर गर्व महसूस करना, दूसरों को जज करना आम बात हो चुकी है ना, इजी भी है, लेकिन अपने आप को जज करना और इस चीज़ का पता लगाना कि हम में कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिस पर हम खुद पर गर्व कर सकते हैं। सो व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू जेन्युइनली अप्रिशिएटेड योर सेल्फ। हाँ, माना दोस्तों कि हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन आपको कोशिश करते रहना चाहिए एंड दैट इट सेल्फ डिजर्व्स एप्रिशिएशन। तो कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और बताइए व्हाट इज दैट वन थिंग यू अप्रिशिएट अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज यू नो व्हाट, समटाइम्स वी ऑल नीड अ रिमाइंडर ऑफ हाउ फार वी हैव कम। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप में अप्रिशिएट करने जैसा क्या है, देन ट्रस्ट मी, देयर इज ऑलवेज समथिंग, मे बी योर काइंडनेस, योर पेशेंस, योर हार्डवर्क और सिंपली द फैक्ट दैट डिस्पाइट एवरीथिंग यू केप्ट गोइंग। तो जल्दी से व्हाट्सएप पर लिख भेजिए या कॉल करके जुड़ जाइए। आई एम वेटिंग टू हियर योर ब्यूटिफुल थॉट्स एंड टिल देन लेट्स कंटिन्यू दिस म्यूजिकल जर्नी विथ अनदर ब्यूटिफुल सॉन्ग। और आपको बता दें कि अगर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना चाहते हैं तो द नंबर इज 4023234822। और क्योंकि मैंने आपसे एक वादा किया था कि आज की प्लेलिस्ट बेहद खूबसूरत होने वाली है, तो ऐसे ही एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ चलेंगे। एंड दिस सॉन्ग इज फ्रॉम द फिल्म ये दिल क्या करे, जो कि आई थी दिल क्या करे 1999 में आई थी। तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग, सुनते रहिए। ये है FM रेनबो 101.9 और सिलसिला जारी है हेलो रेनबो का।

0: वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ मालवी अविका आपके साथ, और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9। और अब वक्त है हेलो रेनबो का, जहाँ हम आपसे सवाल पूछते हैं और इसी सिलसिले में आपसे रूबरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का सवाल ये है कि व्हाट मेक्स यू अप्रिशिएट योर सेल्फ। जी हाँ, ऐसा कौन सी चीज़ है या कौन सी बात है जो आप खुद अप्रिशिएट करते हो खुद के बारे में। तो लाइन्स खुल ओपन है और आप अपना फ़ोन उठाएं और हमें बताइए, कॉल कीजिए और हम लोग रूबरू करते हैं। लेकिन लाइंस तो हम पहले अपना पहला कॉल उठाते हैं और ये है हेलो रेनबो। हेलो रेनबो,
1: अरे गुड
0: आफ्टरनून सर, आपका नाम?
1: आफ्टरनून
0: सॉरी सर,
1: आवाज आवाज थोड़ी बैठी हुई है,
0: कोई बात
1: इसलिए
0: नहीं सर,
1: क्षमा
0: आज आप
1: चाहता हूँ।
0: जी, कोई बात नहीं। आपने आज का सवाल सुना सर, तो बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप खुद अप्रिशिएट करते हो खुद के बारे में।

0: पिता हमारे पास एक पार्क है
1: जी,
0: तो डेली मैं वहाँ पर जाता हूँ और लोगों को हंसाता हूँ, करता हूँ, ये करता हूँ। सो मेनी इयर्स आई एम गोइंग टू द पार्क।
1: बहुत बढ़िया सर।
0: क्योंकि मेरे सराटी का पेन है तो वहाँ पर थोड़े ये है, तो वहाँ पर बैठ के मेरा योगा मैं कर लेता हूँ।
1: जी सर।
0: तो क्या है, योगा डे आ रही है 21 जून को, तो ऑलरेडी मैं लाफिंग और क्लैपिंग करते जा रहा हूँ, 3 महीने हो गए हैं
1: जी।
0: तो उसके लिए अब क्या है, 30-40 पीपल आर अटेंडिंग माय क्लास।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया सर।
0: या
1: थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप जाते हैं रोज़ मॉर्निंग पार्क्स पे जाते हैं और लोगों को हंसाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप ये अच्छा काम बरकरार रखें। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद माँ आपका भाई।
1: थैंक यू
0: सर। मैडम
1: सर मेरा नाम मालविका है।
0: अच्छा जी, थैंक यू।
1: जी सर,
0: थैंक यू। वेलकम टू द शो।
1: थैंक यू सर। तो दोस्तों, जैसा आपने सुना कि अभी जो हमारे कॉलर थे वो रोज़ पार्क जाते हैं और लोगों को योगा सिखाते हैं और हंसाते हैं, खुल के बात करते हैं, और हमें भी ये योगा, हंसना, ये सब हमारी लाइफ का डेली पार्ट बनाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं एक गाने के साथ, फिर हम दूसरा कॉल लेते हैं और जुड़ी रहिए हमारे साथ। ये है आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो।
2: యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారు అందిస్తున్నారు అద్భుతమైన 444 రోజుల డిపాజిట్ పథకం.
3: ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేటుతో వృద్ధులకు 7.10% మరియు వయోవృద్ధులకు అదనంగా 0.25% వడ్డీ రేటు.
2: మరిన్ని వివరాలకు మీ దగ్గరలో ఉన్న యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్రాంచ్ ను సంప్రదించండి.
4: FM Rainbow 101.9.

0: It's 12 minutes past one by the studio clock. A very, very good afternoon, dear listeners. आप जुड़े हुए आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ, और ये वक्त यही कहता है कि हम हैं हेलो रेनबो के साथ, और वक्त है थोड़ा सा हेलो हेलो करने का. जी हाँ, यानी फ़ोन लाइंस खुली हुई हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बातें हम तक पहुँचा सकते हैं. हमारा फ़ोन, हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं वो है 0402323000, 0402323484821 और 0402970471 5. और आज का जो सवाल है बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम कई दफ़ा भूल जाते हैं अपने आप को अप्रिशिएट करना, है ना. और ऑब्वियसली दूसरों को जज करना कि किस में क्या अच्छा है बहुत इजी है, बट अपने आप को जज करना कि हम में क्या अच्छा है क्या गलत है, ये बेहद मुश्किल काम है. तो ऑब्वियसली जो अच्छी चीज़ है उसे बढ़ावा देना चाहिए, जो अच्छी चीज़ नहीं है जज करना चाहिए कि क्या मैं गलत हूँ, और फिर उस गलती को कोशिश कीजिए कि ना दोहराएं आप. लेकिन हाँ, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं यहीं पर हम चूकते हैं, है ना. अपने आप को अच्छी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं. तो मेरा क्वेश्चन यही है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू जेन्युइनली अप्रिशिएटेड योरसेल्फ, और कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको यू नो मोटिवेट करती है अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए और भी ज़्यादा. तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे कुछ कॉलर्स बिल्कुल तैयार हैं. आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन होते हैं. हेलो रेनबो.
1: गुड आफ्टरनून निशा जी.
0: गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत.
1: कैसे हैं मैडम आप?
0: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर?
1: एकदम बढ़िया मैडम.
0: चलिए बहुत अच्छी बात है. और आज का जो मौसम है इसे एंजॉय किया कि नहीं आपने?
1: एंजॉय बिल्कुल एंजॉय करें मैडम, कल परसों तो परेशान थे.
0: हाँ जी हाँ जी,
1: बिल्कुल एंजॉय करें मैडम.
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी चीज है.
1: मेरा तो सर मैडम अपने आप को तारीफ इसलिए कर लेता हूँ मैडम, कोई भी कुछ भी गलती हो गया ना मैडम, फौरन सॉरी बोल देता हूँ. देरी ना करते, उसे सोचने का कुछ भी नहीं रहता. और कोई मेरे को छोटा मोटा हेल्प कर, छोटा करे या बड़े करे,
0: जी जी
1: थैंक यू बोलता हूँ बस.
0: थैंक यू, अच्छी बात है.
1: ये कर दो, तारीफ कर लेता हूँ मैडम.
0: चलिए बहुत अच्छी चीज है. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग.
1: ओके मैडम,
0: थैंक यू सो मच. तो जी हाँ, एक छोटी सी चीज कही इन्होंने.

0: जो कि कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट भी है. कभी कभी अपने आप को भी थैंक यू बोल देना, कभी कभी अपने आप को भी सॉरी बोल देना जो हम भूल जाते हैं ना, तो कितना ज़रूरी है अपने आप को भी थैंक यू बोल देना या सॉरी बोल देना. खैर, हम यहाँ पर बात कर रहे थे सेल्फ एप्रिसिएशन की, कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए वो. और आपने लास्ट टाइम जेन्युइनली अपने आप को कब अप्रिशिएट किया था, किस चीज़ के लिए आप अपनी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाते हैं. वैसे तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी तारीफ़ बस करते ही रहते हैं, मानते ही नहीं है ना. तो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें कितना कुछ अच्छा होता है ना, जो हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, लेकिन वो इंसान बस अपनी तारीफ़ करता ही नहीं है ना. तो कभी कभी उस इंसान को अपनी तारीफ़ करने की ज़रूरत होती है. एंड ऐसे ही हमारे कुछ लिसनर्स हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट लिसनर कौन है. हेलो रेनबो.
1: हेलो रेमबो, गुड आफ्टरनून आदाब, निशा जी, मल्लिका जी, दोनों को भी मेरा प्यार भरा सलाम।
0: गुड आफ्टरनून शेर खान जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह की दुआ है, अल्लाह का करम है, और सभी सुनने वालों को भी प्यार भरा सलाम आदाब है। और अल्लाह से मैं भी दुआ करता हूँ आपको,
0: जी
1: मालविका जी को भी, और सभी सुनने वालों को अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे हमेशा।
0: जी जी शुक्रिया. और बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जी, पहले तो बहुत खुशी हो रही है, आपका स्वागत है, आप बहुत दिनों के बाद आए हैं और बहुत
0: थैंक यू सो
1: अच्छा
0: मच
1: लग रहा है। आज भी मौसम भी
0: जी.
1: सुहाना और
0: मौसम, हाँ जी,
1: डबल सुहाना
0: मौसम
1: हो गया, मौसम
0: काफ़ी
1: मौसम आदाब
0: सुहाना
1: के आ
0: है. वेल,
1: गए।
0: चलिए
1: जी,
0: जी,
1: बहुत अच्छी एंट्री हुई है आपकी,
0: हाँ
1: आप
0: जी,
1: दोनों भी मैडम को शुक्रिया। और मैं हमेशा निशा जी अपने आप में क्या खामी है ये तलाशता रहता हूँ हमेशा, क्या बुराई है बस इसमें सोचता रहता हूँ, मुझ में अच्छा ही है, मैं अच्छा हूँ ये नहीं समझता हूँ मैं। हाँ, मुझे अच्छा करते रहना है। अरे मुझसे अगर कुछ गलती हो गई या बुरा हो रहा है या कुछ बुरा हुआ है या मुझे क्या अच्छा करना है, ये कोशिश में रहता हूँ मैं, हमेशा कोशिश करता
0: जी
1: हूँ
0: जी
1: कि मैं अच्छा करूँ और सबके लिए दुआएं करता रहूँ और अपने लिए भी दुआएं करता रहूँ और सबर करूँ और अल्लाह की जात पे भरोसा करूँ और कोई भी हाल में रहो अपने आप को समझाता रहूँ और मुस्कुराता रहूँ, चाहे खुशी हो या गम हो,
0: जी जी
1: मुस्कुराने की कोशिश करना, अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने की कोशिश करना, कोई बड़ी बड़ी धन दौलत या
0: जी
1: प्रॉपर्टी से या कोई एटीट्यूड से नहीं, कोई लालच या मतलब से नहीं, सिर्फ अपनी सादगी से अपने आप को ये
0: जी
1: करने की कोशिश में हूँ मैं। कामयाब हूँ या नहीं हूँ ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, और कभी भी मैं परफेक्ट तो कभी मरे तक भी नहीं रहूंगा, मरे के बाद भी नहीं रहूंगा, पता नहीं क्या होगा, अल्लाह जब बताएंगा तभी फैसला होगा मेरा कि मैं किस तरह का इंसान था या
0: जी
1: क्या
0: जी
1: था और क्या मेरे आमाल थे, क्या कर्म था।
0: जी
1: बस मैं इस कोशिश में हूँ, बस अल्लाह का डर और खौफ रखना और सादगी वाला जीवन बसर करना, बस ये कोशिश में हूँ
0: चलिए,
1: मैं।
0: बहुत अच्छी बात है. तो चलिए,
1: जी
0: बात करके बेहद अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए.
1: निशा जी, एक सॉन्ग की फरमाइश थी अगर लेकर तो।
0: अच्छा जी, बिल्कुल कीजिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं अपनी प्लेलिस्ट से कुछ चुनिंदा सॉन्ग्स आज प्ले कर रही थी. तो बहुत सारे हमारे लिसनर्स भी हैं जिन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट की थी, और उनसे भी माफ़ी
1: कोई बात नहीं,
0: चाहूंगी
1: कोई
0: क्योंकि नहीं
1: बात
0: मैं
1: नहीं,
0: प्ले
1: मैं
0: कर पाई.
1: रिक्वेस्ट कर देता हूँ,
0: हाँ जी,
1: आपकी मर्जी,
0: बिल्कुल
1: आप करें
0: बिल्कुल
1: ना करें।
0: बिल्कुल जी.
1: फिल्म है सच्चा झूठा राजेश खन्ना की,
0: ओके जी,
1: और टाइटल सॉन्ग है दिल को देखो चेहरा ना देखो।
0: ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात
1: हाँ,
0: है, थैंक
1: करे
0: यू
1: भी
0: सो
1: तो गुड,
0: मच.
1: नहीं भी करे तो गुड, कोई
0: ओके
1: बात
0: ओके,
1: नहीं,
0: हाँ जी,
1: बस
0: हाँ जी.
1: हर हाल में खुश रहना है और दिल से मोहब्बत करते रहना है सभी के
0: ओके
1: साथ।
0: जी, थैंक यू सो मच फॉर
1: शुक्रिया।
0: कॉलिंग, थैंक यू जी, थैंक यू. तो जी हाँ, ये थे शेर खान जी, और इनका तो ये कहना था थोड़ा टॉपिक से हटके, कि ये हमेशा अपने अंदर खामियां ही ढूंढते रहते हैं ना, और उन चीज़ों को सुधारते रहते हैं. तो कोई बात नहीं, वो भी एक अच्छी चीज़ है कि आप खामियों को ढूंढ कर उन्हें यू नो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना रहने दे, और फिर तो आई थिंक बस खूबियाँ ही बच जाएंगी, और ज़रूर आपको मौका मिलते रहेगा अपने आप को अप्रिशिएट करने का, अपनी पीठ थपथपाने का, है ना. यस, और भी हमारे कुछ लिसनर्स हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी जुड़ेंगे लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, और उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल स्पॉट. तो सुनते रहिए, ये है एफएम रेनबो 101.9, और आप जुड़े हुए हैं हेलो रेनबो के साथ. करेंगे आपसे ढेर सारी बातें लेकिन एक सॉन्ग के बाद, सुनते रहिए.
2: తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత రాష్ట్రం మొదటిసారిగా జనాభా లెక్కింపునకు సిద్ధమవుతోంది. మొదటి దశ జనగణన April 26 నుంచి June 9 వరకు, May 11 నుంచి June 9 వరకు జరిగే హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్ ఇంటింటి సర్వేలో ఎనుమరేటర్ అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకు మీ కుటుంబ వివరాలు, మీ ఇండ్ల సమాచారం ఇవ్వటం పౌరులుగా మన బాధ్యత. అలాగే స్వీయ గణన ఐడిని కూడా ఎన్యూమరేటర్ కు అందజేయండి. డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెన్సస్ ఆపరేషన్స్ తెలంగాణ.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Well, it's 24 minutes past 1 by the studio clock. Dear listeners, you are tuned in to Akashwani Hyderabad FM Rainbow 101.9. और फिलहाल हम जुड़े हुए हैं हेलो रेनबो के साथ. और अगर आपको भी जुड़ना है हमारे साथ तो हमारे नंबर से 0402323000, 0402323482 और 0402970471 और यहाँ पर बात हो रही है सेल्फ एप्रिसिएशन की कि वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है. एंड क्वेश्चन यही है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम you genuinely appreciated yourself, या फिर कौन सी ऐसी क्वालिटी है आपके अंदर जो आपको मोटिवेटेड रखती है अपने आप को अप्रिशिएट करते रहने के लिए. वेल, यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लिसनर्स जुड़े हुए हैं मैसेजेस के थ्रू भी. और अगर मैं ये सारे ही मैसेजेस एक बार में पढ़ लूँ तो क्या ही बात है ना, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि कुछ मैसेजेस अभी मैं पढ़ पाऊँ.

0: तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे साथ सरवर अली जी और महेश जी जुड़े हुए थे, एंड देन हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। ये हैं रविंद्र राव फ्रॉम बंदलागुड़ा, एंड यस ये लिखते हैं, नमस्ते मैडम, हमारे लिए धरती मूवी से ये मौसम भीगा भीगा सॉन्ग ज़रा प्ले करिए। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र राव जी। मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं कोशिश ही कर रही हूँ, प्ले तो नहीं कर पा रही हूँ सॉन्ग्स, क्योंकि मैंने पहले ही आज कहा था कि मैं आज अपनी प्लेलिस्ट में से कुछ बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग से आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ। एंड यहाँ पर विष्णु जी हमारे साथ हैं एयरपोर्ट बेगमपेट से, लेकिन उनकी फरमाइश प्ले नहीं कर पाई मैं, तो उसके लिए बहुत बहुत मैं माफ़ी चाहूँगी। एंड यस हमारे पास यहाँ पर और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, इनको भी हम एक एक करके शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा मैसेज जो मुझे दिखाई दे रहा है उसे मैं पढ़ना चाहूँगी। एंड ये हैं जयदीप मेहदीपट्टनम से, जो लिखते हैं, निशा जी फाइनली यू आर गिफ्टेड विद सच अ ग्रेट वॉइस, थैंक यू सो मच, एंड लगता है आपका वाइब एंड वॉइस को मैच करने वाली मिल गई। मालविका जी हाँ बिल्कुल, मालविका है यहाँ पर हमारे साथ, एंड ऑफ कोर्स ये मेरी वाइब को एग्जैक्टली मैच कर रही हैं। एंड लिखते हैं ऑल द वेरी बेस्ट टू मालविका, इनकी भी वॉइस बहुत अच्छी है, सो थैंक यू सो मच फ्रॉम मालविका साइड एज वेल। एंड कहते हैं कि मैंने कॉल ट्राई किया था बट लग ही नहीं पाया, तो सोचा मैसेज ही कर दूं। आज का आज एक थॉट शेयर करना था। एंड कहते हैं कि हम लाइफ भर एप्रिसिएशन ढूंढते रहते हैं दुनिया से, लोगों से, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है, बाकी सब चॉइसेस हैं। वाह क्या बात है। इसीलिए शायद सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप वही होता है जो हम खुद के साथ बनाते हैं। सेल्फ एप्रिसिएशन ईगो नहीं होता, ये भी कहते हैं, बस अपनी जर्नी को रेस्पेक्ट देना होता है। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और जब इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख लेता है तब लोनलीनेस भी शांति लगने लगती है। एंड अ स्मॉल मैसेज टू ऑल फ्रॉम हिज साइड कि लाइफ में कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाइए ताकि पूरी ज़िंदगी आप खुद को उसके लिए अप्रिशिएट कर सके। वाह क्या बात है। एंड ये भी लिखते हैं कि आज के ज़माने में पेड़ पौधे बचाना बहुत ज़रूरी है, तो एक पेड़ लगाइए याद से, नेचर को सिर्फ यूज़ मत कीजिए उसे वापस भी दीजिए, पेड़ लगाइए पेड़ बचाइए। एंड सभी लिसनर्स को बहुत सारा प्यार, और इसी से रिलेटेड एक सॉन्ग इनकी जो रिक्वेस्ट है, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, जो कि इनके पापा का फेवरेट है। तो जी हाँ मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग रिक्वेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं, और अगर किसी एक लिसनर की सॉन्ग रिक्वेस्ट यहाँ पर मैंने प्ले की तो मैं बायस हो जाऊँगी, और मैं बायस होना चाहती नहीं हूँ। तो खैर आगे बढ़ेंगे, एंड हमारे जो लिसनर्स हैं, होप कि वो अभी भी मेरे साथ जुड़े हो, क्योंकि बातें काफ़ी हो चुकी है। तो एक लिसनर आई थिंक जो हमसे जुड़ना चाहते हैं उनका मैं कॉल लेना चाहूँगी। हेलो रेनबो,
1: राधे राधे,
0: राधे राधे मुरली जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं निशा जी? एक्सेलेंट
0: एक्सलेंट जी
1: और सुपर रही है आप,
0: हाँ जी
1: और बहुत समय के बाद आपका आवाज सुन रहे हैं हम।
0: जी जी जी
1: आज के टॉपिक के लिए मालविका को जी को भी राधे राधे।
0: हाँ जी, मालविका जी को भी राधे राधे कह रहे हैं मुरली जी।
2: राधे राधे मुरली जी, कैसे हैं आप?
1: आप कैसे? एकदम बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं मालविका जी?
0: जी
2: जी जी
0: ये भी बहुत अच्छी है कह रही।
1: बहुत
2: जी
1: अच्छा
2: मैं भी
1: सही है।
2: बहुत अच्छी हूँ मुरली जी।
1: ठीक है ठीक है। मालविका जी एक
0: ओके
1: बात कहना, मतलब मैं अपने अप्रिसिएशन में अगर मैं बोलता जाऊँ तो आप बोर तो नहीं होंगे निशा जी?
0: आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बताइए, बस हम सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं।
1: वही मतलब
0: जी
1: हमारा मेरा मेरा मम्मी और मेरा फादर कहते थे कि बहुत बढ़िया दिखने में बहुत अच्छा दिखता रहे तू और तेरा
0: अच्छा
1: ड्रेसिंग भी अच्छा रहता
0: ओके
1: बोल के कहते थे। और जो मैं जिनसे भी बात करता हूँ वो लोग भी कहते हैं कि तू तेरे से अगर मिले तो बात करना ही दिल लगता बोल के कहते।
0: जी
1: अच्छा जी, और एक क्या
0: जी
1: है आगे वाले से क्या है, अपन जो भी मतलब प्यार दे, प्यार से बात करना है और प्यार प्यार लेना चाहिए बस इतना ही मेरे तो। बस उसके वास्ते मैं अपने आप को अप्रिसिएशन देता हूँ मैं इस बारे में तो।
0: चलिए क्या बात है।

0: Have a great day,
1: यू
0: both
1: टू
0: of
1: यू
0: you.
1: टू हैव अ ग्रेट डे है. थैंक यू सो मच
0: थैंक
1: फॉर
0: यू वेरी
1: कॉलिंग.
0: मच.
1: थैंक यू जी. तो जी हाँ, ये थे मुरली जी, और इनकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं वो अप्रिसिएशंस याद आ गए जो हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं बचपन से लेकर बड़े होने तक, है ना. बहुत अच्छा लगता है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं किसी कारण, और फिर हमें अप्रिशिएट करने वाले ज़्यादा लोग नहीं बचते. तो उस समय आई थिंक ज़रूरत होती है अपने आप को खुद अप्रिशिएट करने की, या फिर जो हमारे पेरेंट्स ने हमें अप्रिसिएशन दिए थे कभी, वो फिर से एक बार दोहराने के लिए कि हाँ ऐसा मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे, या फिर जो भी आपके स्पेशल वंस हैं आपकी लाइफ में. तो यस, ज़रूरी है कि अपने आप को अप्रिशिएट करते रहें, चाहे वो अप्रिसिएशन किसी और से मिले या फिर आप अपने आप को क्यों ना खुद ही दे दें. खैर, मैं भी अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी बातें कर ली है मैंने, और लगता है कि और भी अब बातें होनी चाहिए, बट अब फ़िलहाल के लिए थोड़ा मैं थक चुकी हूँ. खैर, और भी हमारे लिसनर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी मैं जुड़ने की कोशिश करते रहूँगी. और आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, जी हाँ, बहुत सारे यहाँ पर लिसनर्स हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं, तो आप सभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं उन सभी व्हाट्सएप मैसेजेस को भी शामिल करूँगी. लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको लिए चलती हूँ एक सॉन्ग की तरफ. तो फिलहाल के लिए एक छोटा सा संदेश, और उसके बाद हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग कुमार सानू की आवाज में. सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9.

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 और ये है आपका फेवरेट हेलो रेनबो सेशन, जहाँ पे हम आपसे रूबरू करेंगे। और आज का सवाल है, व्हाट मेक्स यू अप्रिशिएट योरसेल्फ? ऐसी कौन सी बात है जो आप खुद को अप्रिशिएट करते हैं और खुद को बहुत अच्छा महसूस लगता है? तो आज अभी हमारे नेक्स्ट कॉलर हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो रेनबो,
1: गुड आफ्टरनून मैडम।
0: गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप?
1: तो सुपर के ऊपर है मैडम।
0: बहुत बढ़िया सर, आज आपने सवाल सुना,
1: मैडम
0: आज का सवाल सुना आपने?
1: नहीं सुना माँ, मैं बाहर हूँ माँ।
0: कोई बात नहीं सर, हम आपको बता देते हैं। आज का सवाल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप खुद के बारे में अप्रिशिएट करते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करता है कि आप हम बहुत ही अच्छे हैं?
1: जी ऑनलाइन मैडम।
0: जी सर,
1: हाँ कह रहे हैं, मैं उस्मानगंज। मैं तो साइकिल को बहुत ये कर दिया मैडम,
0: कैसे?
1: बाइसाइकिल साइकिल।
0: साइकिल? जी,
1: क्यों बोले तो उसके अंदर पेट्रोल का जरूरत नहीं है, और क्या आप मॉर्निंग या इवनिंग भी चलाए तो भी अपने को एक्सरसाइज होता बॉडी को।
0: जी सर,
1: अब अगर मोटरसाइकिल में गए कि कार में गए, उतना उसको अपने कुछ भी एक्सरसाइज नहीं होता उसमें।
0: जी सर,
1: बाइसाइकिल बहुत अच्छा है, हेल्थ को भी बहुत अच्छा है, और उसको पेट्रोल का भी उसकी जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं, कोई पॉल्यूशन भी नहीं रहता उसमें।
0: बिल्कुल सर।
1: अब आपका नाम क्या है?
0: माल्यविका सर,
1: धन्यवाद अम्मा, कह रहे हैं टॉपिक बहुत अच्छा है।
0: थैंक यू सर, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आपने सुना कि कैसे रमेश जी बता रहे थे कि वो अक्सर साइकिल पे जाते हैं और अपने सेहत का ख्याल रखते हैं, तो हमें भी अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं एक खूबसूरत गाने के साथ, उसके बाद हम और भी कॉल्स लेंगे और रूबरू करेंगे। तो नेक्स्ट सॉन्ग कमिंग अप राइट फॉर यू।

Well, it's 43 minutes past one by the studio clock. A very, very good afternoon, dear listeners. You are tuned into Akashwani Hyderabad, FM Rainbow 101.9. Hello, Rainbow का सफर है जारी और आपसे करनी है और थोड़ी सी बातें. जी हाँ, आप हमसे जुड़ सकते हैं, ढेर सारी बातें कर सकते हैं. और हमसे जुड़ने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर्स एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी, 0402323000, 0402323481 और 0402970475. तो ये हमारे तीन नंबर्स जिन पर आप हमें कॉल करके जुड़ सकते हैं. एक सिंपल सा सवाल मैंने पूछा है आपसे, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू जेन्युइनली अप्रिशिएटेड योरसेल्फ. कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेटेड रखती है अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए, और ऐसा कब पिछली बार हुआ था कि आपने जेन्युइनली अपने आप को अप्रिशिएट किया था. तो जी हाँ, बहुत सारी बातें आई थिंक होने वाली हैं और कुछ बातें तो हो चुकी हैं. जी हाँ, और वो बातें आई थिंक आपकी तरफ से हो चुकी है, मेरी तरफ से अभी भी आपको रिप्लाई नहीं मिला है, रिप्लाई पेंडिंग है. तो चलिए आपको एक एक करके रिप्लाई दिए देते हैं. एंड यहाँ पर सबसे पहले तो मैसेज है सरवर अली जी का, जो लिखते हैं गुड आफ्टरनून. तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप में से जितने भी लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. एंड देन

0: एक और मैसेज ये है इमरान मोहिउद्दीन, ये भी लिखते हैं गुड आफ्टरनून, तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एंड देन यहाँ पर एक और मैसेज ये है शिवा, एंड ये लिखते हैं हेलो निशा जी, हाउ आर यू, तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, उम्मीद है कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। एंड एक बात बोलूँ, आपकी इंग्लिश प्लेलिस्ट भी बहुत ही खूबसूरत है जितनी कि देसी प्लेलिस्ट है, तो जी हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं ये सोच कर ही आई थी एक्चुअली कि मेरी जो इंग्लिश प्लेलिस्ट है वो मेरी देसी प्लेलिस्ट के साथ मैच हो जाए, जो वाइब है ना वो मैच होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो गानों में, चाहे वो जिंदगी में हो, है ना, वाइब जरूरी है। तो यस, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इन्होंने तो लिखा है लॉन्ग ड्राइव प्लस कंट्री रोड, तो हो सकता है आज मौसम भी सुहाना है तो आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पर निकले हैं। तो विशिंग यू अ वेरी लवली डे अहेड। एंड और एक मैसेज ये है अल्मस गुड़ा से अरविंद ऐश्वर्या, और लिखते हैं नमस्ते हेलो आदाब मैडम, तो आपको भी नमस्ते हेलो आदाब। एंड एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है चोरी चोरी चुपके चुपके, तो मैं कोशिश करूंगी, वैसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड देन यहाँ पर हैं हमारे साथ अश्विन जी, जो लिखते हैं जय श्री कृष्णा निशा जी, आपका स्वागत है, बहुत दिनों के बाद आप आए, तो जी हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये हैं अश्विन फ्रॉम कोठी कुशल मार्केट, जय श्री कृष्णा निशा जी और न्यू आरजे को भी, सभी सुनने वालों को भी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यस, इनका एक मैसेज आया है जो कहता है कि समुद्र बहुत बड़ा है परंतु वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता है, घड़ा उसके सामने बहुत छोटा है फिर भी वहाँ राह चलते हुए राहगीर की प्यास बुझा सकता है। वाह क्या बात है, समंदर के पास गहराई है पर उसमें खारापन है, घड़े के पास सादगी है पर उसमें अपनापन है, नाम बड़ा होने से किसी के दिल में जगह नहीं बनती, जब वक्त पर कोई काम आ जाए वही अपना है, जय श्री कृष्ण। वाह क्या बात है, बहुत ही सुंदर सा मैसेज, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस लवली मैसेज। एंड अनदर मैसेज ये लिखते हैं हाय हेलो एफएम रेनबो, आपको भी हाय हेलो, एंड लिखते हैं योर प्रोग्राम इज़ वेरी नाइस, तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एक गाने की फरमाइश है फ्रॉम द मूवी हिम्मत वाला नैनो में सपना, तो मैं कोशिश करूंगी। इनका मैसेज आया है तुकाराम गेट, ये हैं गोपीनाथ, एंड यस थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस मैसेज। एंड एक और मैसेज ये है महेश फ्रॉम बालानगर, आज का दिन बहुत ही अच्छा था सुनकर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, एंड अगर हो सके तो तन्हा दिल। ये सॉन्ग भी मेरा फेवरेट है, मैं चाहूँगी कि मैं ये सॉन्ग प्ले करूँ, बट जैसा कि मैंने कहा कि मैं बायस नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सॉन्ग रिक्वेस्ट हैं, तो मैंने आई थिंक एक भी सॉन्ग रिक्वेस्ट अभी तक नहीं प्ले की है, और वो इसलिए क्योंकि मैं किसी एक का दिल तोड़कर किसी एक का दिल नहीं रखना चाहती थी, और अपनी प्लेलिस्ट को भी थोड़ा यहाँ पर स्पेस देना चाहती थी। बातें काफ़ी हो चुकी हैं, और फिलहाल के लिए मैं एक सॉन्ग की तरफ चलना चाहूंगी और उसके बाद मैं जुड़ूंगी हमारे एक लिसनर से। सुनते रहिए ये है एफएम रेनबो 101.9, और इससे पहले कि इस सॉन्ग की तरफ चलें एक छोटा सा संदेश सुनते रहिए।
1: తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత రాష్ట్రం మొదటిసారిగా జనాభా లెక్కింపునకు సిద్ధమవుతోంది. మొదటి దశ జనగణన ఏప్రిల్ 26 నుంచి జూన్ 9 వరకు, మే 11 నుంచి జూన్ 9 వరకు జరిగే హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్ ఇంటింటి సర్వేలో ఎనుమరేటర్ అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకు మీ కుటుంబ వివరాలు, మీ ఇండ్ల సమాచారం ఇవ్వటం పౌరులుగా మన బాధ్యత. అలాగే స్వీయ గణన ఐడిని కూడా ఎనుమరేటర్ కు అందజేయండి. డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెన్సస్ ఆపరేషన్స్ తెలంగాణ శ్రీమతి భారతి హోళీకేరి గారు ఏమంటున్నారంటే,
2: మీ వివరాలు గోప్యంగా ఉంచబడతాయి, మన జనగణన మన వికాసం, మన జనగణన మన అభివృద్ధి.
3: నేను ఎం శ్రీనివాస్, డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్, హైదరాబాద్. పిల్లల పరంగా మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్స్ కానీ 0 to 18 ఇయర్స్ ఎటువంటి పిల్లలు మీకు కనపడినట్లయితే మీరు 1098కు కాల్ చేయండి, 24/7 అవైలబుల్ ఉంటుంది పిల్లల పరిరక్షణకై, హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ అన్నట్టు.
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, और वैसे तो मैंने सोचा था कि एक सॉन्ग प्ले करते हैं, लेकिन समय को देखते हुए यही कहूँगी कि चलिए कॉलर्स हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उनसे जुड़ेंगे, तो पहले हम कॉलर से ही जुड़ते हैं. आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन होते हैं. हेलो
4: हेलो,
0: रेनबो
4: नमस्कार.
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है. जी
4: वॉलेट प्रभाकर राव ने.
0: हाँ जी प्रभाकर राव जी, बताइए कैसे हैं आप.

0: बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है। आप कैसी हैं?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और बताइए, वेदर एंजॉय कर रहे हैं आप?
0: हाँ,
1: वेदर, मौसम एंजॉय कर रहे हैं? काफी ठंड है आज, थोड़ी
0: बहुत
1: बहुत राहत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठंड है।
1: ओके
0: डेली
1: ओके।
0: डेली रेन आ रहे हैं,
1: डेली?
0: पानी गिर रहा है इधर। हाँ,
1: अच्छा,
0: बहुत सुकून से है।
1: ओके। चलिए, आप हैदराबाद के किस कोने में हैं ये हमें नहीं पता है, बट जिस कोने में भी है बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आप तक पहुंच रहे हैं। एंड क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के ऊपर आप?
0: अभी टॉपिक क्या है मैडम, तेलुगु में बोलो थोड़ा।
1: हाँ जी, बताते हैं आपको
0: हाँ, तेलुगु तेलुगु में थोड़ा बोलो, मैं बोल देता हूँ।
1: सर। ईरोज टॉपिक ఏంటంటే మీ లైఫ్ లో మీ గురించి మీరు ఏ విషయం మీద మీరు మీ మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేసుకుంటారు
0: అయితేనమ్మా,
1: సార్?
0: హలో,
1: చెప్పండి సార్.
0: నాకు జీవితంలో లైఫ్లో ఇచ్చింది ఏమిటంటే, నాకు ఇద్దరు అమ్మాయిలు, వాళ్ళు చిన్నగా ఉన్నప్పుడే మిస్సెస్ ఎక్స్పైర్డ్ అయిపోయింది.
1: ఓకే సార్.
0: అయినా మళ్ళీ నేను పెళ్లి చేసుకోకుండా వాళ్ళిద్దరిని ఆ భగవంతుడు దయ భారం వేసి నేను ఆఫీస్ చూసుకుంటూ వాళ్ళిద్దరిని సీఎల్ చేయించానమ్మా, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్.
1: గ్రేట్ సార్, గ్రేట్ సార్.
0: చాలా నేను ఇప్పుడు ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతాను అన్నమాట. అదే విధంగా ఇప్పుడు బెంగళూరు చిన్నమ్మాయి ఉంటుంది అనమాట, అందుకని నేను రావడాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడే జస్ట్ అడ్మిషన్ కోసం, ఇద్దరు మనవల కోసం వచ్చాను స్కూల్ కి.
1: అమేజింగ్ సార్,
0: అది కూడా ప్రౌడ్ గా చెప్పుకుంటాను నేను.
1: గ్రేట్ గ్రేట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మాతో నమస్కారం సార్. తో దోస్తో, జా ఆపే సునా ప్రభాకర్ జీ హే సాథ జుడే థే, ఉనకా కహనా థా కి ఉనకి దో బేటియా హై ఔర్ ఉన్హోనే యాజ్ అ పేరెంట్ అప్నా కర్తవ్య కో పూరా కియా ఔర్ ఇసి కే సాథ ఉస్ కర్తవ్య కో ఉనకా పూరా కర్నే పర్ ఉనకో ఖుద్ పే బహుత్ హీ నాజ్ హై. ఔర్ క్యూ నా హో దోస్తో, పేరెంట్స్ होते ही ऐसे हैं. उनका वो लोग अपना पूरा ज़िंदगी अपने बच्चों को बड़ा करने में, उनका लाइफ अच्छा बनाने में गुजार देते हैं. और जब उनकी लाइफ वाकई में एकदम मस्त बन जाती है, बहुत अच्छी रहती है, खुश रहते हैं, तो पेरेंट्स भी बहुत खुश रहते हैं. तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और गाना और फिर अपना जर्नी को बरकरार रखते हैं.
2: दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं हेलो रेनबो के साथ। और जी हाँ, ये थे हमारे कुछ कॉलर्स, और क्वेश्चन यही था कि आप अपने आप को किस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं। तो जी हाँ, बहुत सारे आंसर्स हमें मिले और जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप चूकते नहीं हैं अपने आप को अप्रिशिएट करने में। तो यस, सेल्फ अप्रिशिएशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और हमें हर लाइफ के हर एक स्टेज पर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, और हर दिन कोशिश करते हैं कि हम कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें, नया करते रहें। तो ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों के लिए, उस हार्डवर्क के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करना ना भूलें, क्योंकि वही अप्रिशिएशन होता है जो हमें मोटिवेट करता है। और ज़रूरी नहीं कि हमेशा अप्रिशिएशन दूसरे लोगों से मिले, तो कभी कभी जो दूसरे लोगों से अप्रिशिएशन नहीं मिल पाती है, वो हमें अपने आप को खुद भी देनी चाहिए। खैर, इसी मैसेज के साथ आज के लिए आपसे विदा लेंगे, और जी हाँ, यही वादा करेंगे कि फिर से एक बार आपसे मुलाकात होगी। और उस मुलाकात तक अपना रखिए अच्छा सा ख्याल, अपने अपनों का भी रखिए अच्छा सा ख्याल, और जी हाँ, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो 101.9। तो आज के लिए आपसे विदा लेते हैं एक बेहद ही खूबसूरत से गाने के साथ, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। एंड जी हाँ, आप में से जो भी लोग हमसे जुड़े हुए थे और उनकी फरमाइश आज पूरी नहीं हुई है, उनके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि आज कहीं ना कहीं मेरा मन था कि मौसम काफ़ी खूबसूरत है तो मैं अपनी प्लेलिस्ट में से कुछ सॉन्ग्स यहाँ पर प्ले करूँ। इसीलिए बुरा मत मानिएगा एंड मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो 101.9, क्योंकि रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। और यहाँ पर स्टूडियो में आ चुके हैं RJ राजेश। तो मेरा जो सफ़र था आपके साथ वो यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन ये जर्नी कंटिन्यू होगी और आपके साथ ही इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे राजेश। तो मैं और मालविका आज के लिए आपसे विदा लेना चाहते हैं।
1: थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए. उम्मीद करते हैं आपका सफ़र और हमारा सफ़र साथ में यूं ही बना रहे, और सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप मेरी रेडियो साथी सवेरा से रिमझिम हैदराबाद सुन रहे थे। स्टूडियो की घड़ी में रात के 9:30 हो रहे हैं। ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

सामहिन, आज की नए रंग की बज़म कुछ इस तरह सजी है। आगाज़ पर सुनिए हर किताबिंदा तहरीर और पेशकश आयशा बुतुल की है। मत सहल हमें जानों के तहत रईसुल मुतकज़्ज़िलीन जिगर मुरादाबादी पर सैयदा सिद्दीक़ा बेगम की तकरीर नशर करेंगे। गीत सुरीले गाते जामे नाकाबिले फरामोश सुरीले नगमे सुनाए जाएंगे। पयाम शब जनाब जैदी क्या होगा और पयाम शब के साथ ही हमारी बज़्म इख्तिताम को पहुँचेगी।

0: तरह के रास्ते पर गामजन है, जबकि वो कौमें जिन्होंने कुतुबीनी से राह फरार इख्तियार करना मुनासिब जाना आजकल के ज़माने में भी दुखियानुसी तसव्वुरात के चुंगल से आज़ाद होने में कामयाब नहीं हो पाई हैं। वक्त का तकाजा यही है कि नौजवानों को ना सिर्फ कुतुबीनी की अहमियत से आगाह किया जाए, बल्कि ये हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम उनको बेहतरीन किताबों का इंतखाब करने में भी रहनुमाई करें। हैरत की बात तो यह है कि आजकल लोगों को मजहबी किताबों से इल्म हासिल करने की भी फुर्सत नहीं रही। कुछ लोग अगरचे के मजहबी किताबों का मुताला करते भी हैं, तो वो उनको सिर्फ याद करते हैं, जबकि उनके असल मतलब से ना आशना ही रहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि नौजवानों की हौसला अफजाई की जाए, ताकि वो कुतुबीनी की आदत अपनाएं। हमें ये जान लेना चाहिए कि तरक्की और बेहतरी का राज कुतुबीनी के साथ वाबस्ता है। दुनिया की बेहतरीन साइंसी, अदबी और मजहबी किताबों का मुताला कर हम उस हकीकत से आशना हो सकते हैं, जिसमें हमारी बेहतरीन और पुरसुकून जिंदगी का राज छुपा है।
1: अभी आप हरफ़ ताबिद ना समात फरमा रहे थे। तहरीर और पेशकश आयशा बुतुल की थी। सामाइन, आइए सुनते हैं मत सहल हमें जानो के तहत रईसुल मुतकज़िलीन, जिगर मुरादाबादी पर एक नशरिया। तहरीर और पेशकश सैयदा सिद्दीक़ा बेगम की है।
2: ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 3:02 और 5 सेकंड्स हो रहे हैं। अब वक्त हुआ जाता है हमारी उर्दू सभा के प्रोग्राम्स का। सामाइन की खिदमत में पुरखलूस आदाब। सभा के आगाज पर पेश है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

किया तो इनके कलाम में पाकीजगी और रूहानियत झलकने लगी। और इस मोड़ पर जिगर कहते हैं, जुनून सजदे की मेराज है यही शायद, जुनून सजदे की मेराज है यही शायद, तेरे दर के सिवा कोई आस्ताना रहा। तरन्नुम से शेर पढ़ना सामयिन की दाद तहसीन और मुकर्रर इरशाद के हंगामों से महफिल मुशायरे को लूट लेना जिगर मुरादाबादी की खासियत है। इनकी शायरी में गहराई और हकीकत मिलती है। जिगर मुरादाबादी लफ्जों का खूबसूरत इस्तेमाल करते हैं। इनकी तर्ज तहरीर में बला की शगुफ्तगी व शिस्तगी मौजूद है। रवानी से ख्यालात व तजुर्बात की तरसील करते हैं। इनके कलाम में तगज़ुल की तासीर मिलती है। जिगर की शेरखानी का निराला अंदाज है। मौसीकियत, नगमारेजी और दिल को मोह कर जाने वाली उनकी इनफरादियत है। इनकी शायरी की रुमानियत में भी रूहानियत का परतो नजर आता है। इनके मजाज में हकीकत का अक्स नुमाया है। जिगर कहते हैं, नमूद सुबह काजिब ही दलील सुबह सादिक है, नमूद सुबह काजिब ही दलील सुबह सादिक है, उफक से जिंदगी की देख वो उभरी किरण साकी। ये सच है कि हयात जिगर मुरादाबादी का बेशतर हिस्सा रिंदु मस्ती में गुजरा, मगर तासीर कलाम की पाकिजगी अपनी जगह बरकरार है और यही बस खास इनको दिगर शोरा के कलाम में मुनफरिद करता है। जिगर की सादगी मैकशी की इंतहा तो देखी, किस सादगी वो मासूमियत से वो फरमाते हैं, ए रहमत तमाम मेरी हर खता माफ, ए रहमत तमाम मेरी हर खता माफ, मैं इंतहा शौक में घबरा के पी गया, पीता बगैर अजां ये कब थी मेरी मजाल, पीता बगैर अजा ये कब थी मेरी मजाल, दर पर्दा चश्म यार की शहपा के पी गया। जिगर के अशार में इश्क का जो तसव्वुर मिलता है वो इनके जाती एहसासात और तजुर्बे पर मबनी है। शायद इसीलिए इनके अशार में तासीर और जिगर काटने की कैफियत मिलती है। जिगर मुरादाबादी इश्क के राह पर खार पर चलते रहे और इस राह दुश्वार गुजार की वजह जो आबले पड़े, इसका अंदाजा इन्हें बखूबी था। जिगर मुरादाबादी ने अपने इस तजुर्बे को शेर की सूरत में यूं ढाला कि ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जिगर का महबूब कोई ख्याली या फर्जी नहीं है बल्कि हकीकी है और वो हकीकत में इसके हिजर फिराक में तड़पते हैं। इनके इश्क के अशार महज फर्जी दास्तानी नहीं है बल्कि इनके अपने वो जाती तजुर्बात हैं जो वो उन मराहल से गुजर कर कहे हैं, जिसके तुफैल जिगर मुरादाबादी ऐसे शेर कहने पर खातिर हुए। मोहब्बत ऐन मजबूरी ही सही लेकिन ये क्या वाज, मोहब्बत ऐन मजबूरी ही सही लेकिन ये क्या वाज, मुझे बावर नहीं आता मेरा मजबूर हो जाना। या फिर ये शेर सुनिए, वफा का नाम कोई भूल कर नहीं लेता, वफा का नाम कोई भूल कर नहीं लेता, तेरे सलूक ने चौंका दिया जमाने को। जिगर मुरादाबादी मोहब्बत को फैजाने इलाही समझते हैं और कहते हैं, अल्लाह अगर तौफीक ना दे तो इंसान के बस का काम नहीं, अल्लाह अगर तौफीक ना दे तो इंसान के बस का काम नहीं, फैजाने मोहब्बत आम से ही इरफान मोहब्बत आम नहीं। जिगर अपनी खुश बयानी के बायस बहुतों पर बाजी ले गए और इनकी शायरी नहायत ही खुश आहंग और मुतरनिम है। इनके नजदीक हासिल कायनात और हकीक कायनात महज हुस्न है। इनकी गजलें इस्तियारात व तशबीहात और तगज़ुल से ही भरपूर हैं। जिगर के कलाम में जिंदगी का एहतराम, आदमियत की कद्र और हुस्न की सरशारी वो मस्ती से ममलू है। जिगर अपने कमाल फन का सबब अपनी मोहब्बत और महबूब को ठहराते हैं और कहते हैं, मेरा कमाल शेर बस इतना है ऐ जिगर, मेरा कमाल शेर बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गए मैं जमाने पे छा गया। जिगर का ये दावा एक हकीकत बन गया और वो गजल के शायर की हैसियत से अपने फन शेर से न सिर्फ खुद तड़पते रहे बल्कि हर सुनने वाले को तड़पाते रहे। जिगर के कलाम में सोज गुदास सरमस्ती वो शादमानी की कैफियत मिलती है, लेकिन जिगर ने इसके इजहार में तवज्जुन को हाथ से जाने नहीं दिया। जिगर को अगर कुछ याद रहा तो वो सिर्फ मोहब्बत रही। मोहब्बत पर कहते हैं, दुनिया के सितम याद न अपनी वफा याद, दुनिया के सितम याद न अपनी वफा याद, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद। जिगर के गमे इश्क में एक अजीब वो गरीब कैफियत मिलती है जो बहुत लतीफ होते हुए भी मसर्रत को अपनाए हुए हैं। इन्होंने गमे यार को अपनी जात के लिए नागुजीर बना लिया। जिगर ने मोहब्बत को कभी एक तरफा नहीं जाना, वो इस बात से खायल रहे कि दोनों तरफ आग बराबर लगी रही और वो अपने महबूब को अपने इश्क से इस बात पर मजबूर करते हैं कि वो भी इसी मोहब्बत के साथ इनके जज्बों का जवाब दें। चाहने और चाहे जाने की कैफियत सच्ची मोहब्बत
اور سچے عاشق کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جگر نے ان کیفیات کو یوں ظاہر کیا ہے کہ عرض نیاز عشق کا

चाहिए क्या और सिला, अर्ज नियाज इश्क का चाहिए क्या और सिला, मैंने कहा बच्चश्म नम, उसने सुना बच्चश्म तर। एक और मुकाम पर कहते हैं, जहाँ वो है वही मेरा तसव्वुर, जहाँ वो है वही मेरा तसव्वुर, जहाँ मैं हूँ ख्याले यार भी है। जिगर के कलाम की असल पहचान गजल में तगज़ुल, कलाम में सोज़ो गुदाज, शेर खानी में मौसिकियत, तरन्नुम नगमा रेजी रची बसी है। इनके कलाम के दो अहम पहलू, एक शराब व शबाब की रिंदो मस्ती है तो दूसरा अहम रुख इश्क के हकीकी से सरशारी है। इब्तदाई कलाम में शराब शबाब रिंदो मस्ती हुस्न व इश्क में फंसे रहे, लेकिन जब वक्त ने करवट ली और मुल्क के हालात बदले, हंगामे बर्पा हुए, क़यामत खेज़ तबाही हुई, मुल्क तकसीम हुआ, हिजरत का सानेह हुआ, खूनरेजी हुई, कत्ल व गारत गिरी हुई और तड़पती इंसानियत को देखा, मुल्क की तहजीब को दम तोड़ते देखा, तो जिगर मुरादाबादी को काफी सदमा हुआ और वो अंदर से टूट कर रह गए। इनके तड़पते दिल की पुकार इनकी शायरी से आतिश गुल नमुदार हुई। इन हालात से जिगर पर जो जहनी इनकलाबी तगैर नमुदार हुआ, वो आतिश गुल के नाम से तीसरा मजमा कलाम शाये हुआ। वो कब के आए भी और गए भी नजर में अब तक समा रहे, वो कब के आए भी और गए भी नजर में अब तक समा रहे हैं, वो कब के आए भी और गए भी नजर में अब तक समा रहे हैं, ये चल रहे हैं वो फिर रहे हैं, ये आ रहे हैं वो जा रहे हैं। शराब आँखों से ढल रही है नजर में मस्ती उबल रही है, शराब आँखों से ढल रही है नजर में मस्ती उबल रही है, झलक रही है उछल रही है, पिए हुए हैं पिला रहे हैं। जिगर का ये कमाल है कि इनकी शायरी में खुश्क मौजूद नहीं मिलते, वो हर हाल में बेखुदी के नगमे गाते हैं जिसमें हुस्न व इश्क के किस्से जरूर होते हैं, और जो फिक्र शायर में इसे उस मुकाम तक जरूर पहुंचा देते हैं जहां इश्क हकीकी का रंग मिलता है। यूं तो जिगर ने हुस्न व इश्क और तसव्वुर महबूब के मौजूद को अपनी गजल में शामिल किया इस नाजुक वक्त में जबकि गजल को कमतर दर्जा दिया जा रहा था। इन्होंने गजल के विखार को बुलंद किया, बल्कि गजल में तगज़ुल भर कर इसे जान शेर यानी रूह शेर बना दिया। जिगर की गजलों में अल्फाज नर्म और रवां होते हैं जिससे खुद ब खुद मौसिकी पैदा होती है। जैसे जब मसरत करीब आई है, जब मसरत करीब आई है, गम ने क्या क्या हंसी उड़ाई है। जिगर मुरादाबादी अपने फरिश शेर में अल्फाज और मुहावरे पर पूरी कुदरत रखते हैं। जज्बात के तेज बहाव के साथ अल्फाज और मुहावरे के बर्जिस्ता इस्तेमाल ने इनके कलाम को पुरकशिश बना दिया है। इनकी शायरी सिर्फ गमे जाना तक महदूद नहीं है, बल्कि एक हिस्सा शायर और समाज के एक फर्द होने की हैसियत से इन्होंने मुल्क की मुख्तलिफ मुसीबतों का जिक्र किया है। गो के वो बुनियादी तौर पर सियासी शायर नहीं है, बल्कि इनका ये दावा है कि वो मोहब्बत के बंदे हैं और मोहब्बत का पैगाम देना ही इनका फर्ज आयन है। इसीलिए अहले सियासत को मुखातिब करके कहते हैं, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। खैत बंगाल पर जिगर मुरादाबादी तड़प उठे और कहने लगे, बच्चों का तड़पना वो बिलखना वो सिसकना, बच्चों का तड़पना वो बिलकना वो सिसकना, माँ बाप की मायूस नजर देख रहा हूँ मैं। हिंदुस्तान में जब ऐलान जमहूरियत हुआ तो जिगर मुरादाबादी ने लिखा, खुदा करे ये दस्तूर साजगार रहे, खुदा करे ये दस्तूर साजगार रहे, जो बेकरार है अब तक उन्हें करार आया। सन 1941 से लेकर सन 1957 के कलाम जिगर में एक अजीम इनकलाबी तब्दीली देखने को मिलती है। इनकी शख्सियत पहले से ज्यादा महबूब दिल आवेज वो महसूर कुन बन चुकी थी। इनका कलाम पहले से ज्यादा निखरा हुआ मिलता है, वो जज्बे रूहानियत से लबरेज और इश्क हकीकी से सरशार नजर आते हैं और इनके कलाम में हर सू खुदा की कुदरत के आसार नजर आते हैं। अशार इस तरह से हैं, खुदा वो दर्द मोहब्बत हर एक को बख्शा, खुदा वो दर्द मोहब्बत हर एक को बख्शा कि जिसमें रूह की तस्कीन पाई जाती है। आसान नहीं मामला है जलवा वो नजर, आसान नहीं मामला है जलवा वो नजर, चश्मे कलीम चाहिए दीदार के लिए, के इस फानी जिंदगी की हकीकत के असरार और रमूस को जिगर समझने लगे तो ये कहने पर खादिर हुए कि हस्ती के नुकात पूछता है, हस्ती के नुकात पूछता है, गाफिल तुझे अपनी भी खबर है। जिगर ने उर्दू के अलावा फारसी जुबान में भी शायरी की है। जिगर के तीन उर्दू मजमे कलाम है, दागे जिगर सन 1922 में शाया हुआ, शोले तूर 1932, आतिश गुल 1958 में मंजर आम पर आए। जिगर ने अपने जिंदगी के आखिरी दहे में अपने शाये शुदा मजमुओं में कुछ इसलाह की। मजमु शोले तूर दौरे अव्वल ता दौरे चहारुम की नजरसानी करके दोबारा शाया करवाया। जिगर का इंतकाल

0: 9 सितंबर सन 1960 को गोंडा लखनऊ में दिल का शदीद दौरा पड़ने की वजह से हुआ। जिगर को पद्मभूषण खिताब मिला। इनकी ज़िंदगी में ही इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एजाजी डॉक्टरेट से नवाजा गया। इनकी वफ़ात के बाद इनके चाहने वालों ने जिगर मुरादाबादी के नाम पर जिगर मेमोरियल इंटर कॉलेज और एक कॉलोनी जिगरगंज के नाम से मंसूब की। बखौल जिगर, दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि यार का पैगाम आ गया।
1: तो दोस्तों, अभी आपने समाप्त किया मत सहल हमें जानो। पेशकश थी सैयदा सिद्दीका बेगम की। आइए दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं चंद गजलें।

0: तो दोस्तों, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम नैरंग इख्तिताम को पहुंचता है। इस वादे के साथ दोबारा जल्द होगी आपसे मुलाकात इन्हीं मीटर्स पर। तब तक के लिए आपकी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर को दीजिए इजाजत।
1: सामाइन, अभी आप मत सहल हमें जानो के तहत रईसुल मुतगज़लीन जिगर मुरादाबादी पर तकरीर समात फरमा रहे थे। तहरीर व पेशकश सैयदा सिद्दीका बेगम की थी। सामाइन, आइए बज़्म नरम को जय रखते हुए सुनते हैं गीत सुरीले गाते जा प्रोग्राम। आइए इसके तहत हम सुनेंगे पुराने नाकाबिले फरामोश सुरीले नगमे। सामाइन, जैसा कि आप जानते हैं कि संगीत इंसानी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। ये ना सिर्फ दिल को सुकून देता है बल्कि इंसान के जज्बात एहसासात को भी जाहिर करता है। क़दीम ज़माने से ही संगीत को खुशी, गम, मोहब्बत, इबादत का इजहार का ज़रिया समझा जाता है। संगीत में सुर, ताल और लय का हसीन इम्तिज़ाज पाया जाता है जो सुनने वाले के दिल पर गहरा असर डालता है। जैसा कि हम रज़िया सुल्तान के इस गीत से इस बात की तस्दीक करते हैं जिसकी अभी पेशगोई की गई है।

फिल्में गीत हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। ये ना सिर्फ हमें तफरी का ज़रिया है बल्कि हमारे जज्बात, एहसास और ख्यालात की अक्कासी भी करते हैं। फिल्मी गीतों का सफ़र बहुत ही दिलचस्प और तवील है, जो वक्त के साथ साथ तरक्की करता गया और आज जदीद दौर में नई शक्ल इख्तियार कर चुका है।

0: फिल्म उम्रा जहाँ से लिया गया गीत अभी आपने सुना। सामाइन, फिल्मी गीतों की इब्तिदा फिल्मी सनत के आगाज़ के साथ हुई, जब खामोश फिल्मों का दौर ख़त्म हुआ और बोलती फिल्में सामने आई तो गीत की अहमियत बढ़ गई। हिंदुस्तानी सिनेमा में पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, जिसके बाद फिल्मी गीतों का बाकायदा आगाज़ हुआ। इब्तिदा में गीत सादा और रिवायती अंदाज में पेश किए जाते थे और ज़्यादातर क्लासिकी मौसीकी पर मबनी होते थे।
1: कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
2: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

फिल्म आंधी से लिया गया दो गाना अभी आपने सुना। वक्त गुजरने के साथ साथ फिल्मी गीतों में जिद्दत आई। 1950 और 1960 की दहाई में फिल्मी गीतों का मौसीकी का सुनहरी दौर आया। इस दौर में मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आशा भोसले जैसे अजीम गुलकारों ने अपनी आवाज़ के जादू से लोगों के दिल जीत लिए। इनके गीत आज भी मकबूल है और हर नस्ल इन्हें शौक से सुनती है।

फिल्म सिलसिला से लिया गया दो गाना अभी आपने सुना। फिल्म में गीत सिर्फ तफरी का ज़रिया नहीं बल्कि माशरे की भी अक्कासी करते हैं। मोहब्बत, वतन परस्ती, दोस्ती, गम, खुशी और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को फिल्मी गीतों में खूबसूरती से पेश किया जाता है। बाज़ गीत इंसान को हौसला देते हैं, बाज़ गम बांटते हैं और बाज़ खुशियों को

फिल्म लैला मजनू से लिया गया नगमा आपने सुना। जदीद दौर में टेक्नोलॉजी की तरक्की ने फिल्मी गीतों को नई जहत दी है। अब डिजिटल मौसीकी, जदीद आलात और नए अंदाज के जरिए गीत तैयार किए जाते हैं। ए आर रहमान जैसे मौसीकारों ने फिल्मी मौसीकी को आलमी सतह पर पहुंचाया और हिंदुस्तानी मौसीकी को नई शान दी। आइए सुनते हैं फिल्म जूली से लिया गया एक गीत।

मुख्तसर ये कि फिल्मी गीतों का सफ़र माजी से हाल तक एक खूबसूरत दास्तान है। ये गीत हमारी ज़िंदगी में खुशियों और यादों का हिस्सा रहेंगे और आने वाली नस्लों को भी मुतासिर करते रहेंगे। गीत और संगीत इंसानी ज़िंदगी का एक अटूट और लाजमी हिस्सा है। आइए सुनते हैं, रॉकी फिल्म से लिया गया ये नगमा।

अभी आप गीत सुरीले गाते जा के तहत फिल्म गीत समाप्त फरमा रहे थे। सामाइन आइए सुनते हैं कल की बज़्म निरंग में पेश किए जाने वाले प्रोग्राम्स का खुलासा। कल शब 9:30 पर बज़्म निरंग का आगाज़ होगा हरफ ताबिंदा से। तहरीर और पेशकश सैयदा आसिमा जैदी की है। कल की बज़्म में मुशायरे की महफिल सजेगी जिसमें हिस्सा लिया है जनाब सरदार सलीम, डॉक्टर फारूक शकील, जनाब सरवर हाशमी वगैरह ने। गीत सुरीले गातजा के तहत पुराने फिल्मी नगमे सुनाएंगे। पयाम शब जनाब जैदी का होगा। सामाइन बज़्म के आखिर में आइए सुनते हैं पयाम शब। तहरीर व पेशकश जैदी की है।

0: चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना, नई रोशनी है। हर नई चीज़ वाकई बेहतरी नहीं होती। अगर तरक्की के नाम पर नुकसान हो रहा हो तो उसे तरक्की नहीं, तबाही कहा जाएगा। नए जमाने की हर बात को बगैर सोचे समझे कबूल करना दानिशमंदी नहीं। हमें हर चीज़ को अकल और बसीरत से परखना चाहिए। वो रोशनी जो घरों को जला दे, दरअसल रोशनी नहीं बल्कि आग है। हकीकी रोशनी वो है जो सुकून, भलाई और खैर लाए। जदीदियत के चक्कर में अगर हम अपनी रिवायात, अखलाक और इंसानियत को खो दें तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। और ये भी सच है कि हर चमकती चीज़ रोशनी नहीं होती। असल कामयाबी वही है जो इंसान और माशरे को महफूज और बेहतर बनाए।
1: समाइन, इसी के साथ ही बज़्म नरम अपने अख्तिताम को पहुंचती है। कल रात 9:30 पर बज़्म नरम में हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आदाब, शब खैर। स्टूडियोज़ की घड़ी में रात के 11 बज रहे हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेज़ी

0: खबरें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई

0: संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपये लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मालिया बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ना पापा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाय बाय।
1: सुनो तो, सुनो तो, ना।

इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: Atembusgerei. Wenn es eine Atembusgerei.
1: भाई हमको भी पता है और आपको भी पता है कि हम यहाँ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर बार बार क्यों आते हैं, क्योंकि यही तो मिलता है एकदम खरा सोना, असली सोना, यानी कि ऐसे खूबसूरत प्यारे से गीत जो कहीं और आपको नहीं मिलते। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मनमीत, और अभी जो आपने ये गीत सुना कल आज और कल फिल्म का, शंकर जय किशन का संगीत, और इस गीत को लिखा नीरज ने और इस गीत को आवाज़ दी आशा भोसले और किशोर कुमार ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

प्यार बिल्कुल यूं ही बरकरार रहेगा। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब मुझे अपनी दोस्त रितिका सैनी को दीजिए इजाजत। गीत मेरे मन मीत में आज बस इतना ही। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई

0: दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं।

0: विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अवशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपये लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसरों और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल को मिशन मोड में बढ़ावा देने पर बल दिया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में गन्ना और प्याज किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में मिशन क्वीन पाइनएप्पल का शुभारंभ किया। लगभग 200 करोड़ रुपए की इस पहल का उद्देश्य GI टैग प्राप्त त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल की खेती, पाइनएप्पल की गुणवत्ता तथा कीमत को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में सीवेज टैंक की सफाई के दौरान एक श्रमिक की मौत और दूसरे के घायल होने के मामले में दिल्ली नगर निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, or PDS, including ration transport, dealer support, and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS or Sarthak PDS has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. INB Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement regarding Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं
2: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे फर्स्ट द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्ट्रीट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स सेकंड देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड अ डिसीजन हैज बीन टेकन इन

सरगोशी करती हुई हवाओं के बीच चांदनी में नहाई इस रात में शुरुआत करते हैं आपकी अपनी महफिल जिसका नाम है निशिकंधा। और आपने

किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपके साथ अंजू, स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

वो कह के चले कि बस इतनी मुलाकात बहुत है, वो कह के चले कि बस इतनी मुलाकात बहुत है। मैंने कहा रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, अभी रात बहुत है।

वजह हम ढूंढते हैं तेरे पास आने को, वजह हम ढूंढते हैं तेरे पास आने को, ये दिल बहुत बेकरार है तुझे धड़कन में बसाने को।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

हमारे जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है निशिगंधा और मैं हूँ आपके साथ अंजू।

इस मोहब्बत में किसी सूरत में भी नींद आती नहीं, तो मैं कैसे सो जाऊं? इस मोहब्बत में किसी सूरत में भी नींद आती नहीं, तो मैं कैसे सो जाऊं? कोई शय दिल को बहलाती नहीं, तो मैं कैसे सो जाऊं?

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मेरी हर सुबह का उजाला तुमसे है, मेरी हर सुबह का उजाला तुमसे है, इस दिल का हर एक कोना तुमसे है। तुम बिन तो हम कुछ भी नहीं है हम सफर, क्योंकि मेरी जिंदगी का पूरा फसाना तुमसे है।

पाकर तुम्हें अब कोई ख्वाहिश नहीं रही बाकी, पाकर तुम्हें अब कोई ख्वाहिश नहीं रही बाकी, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी रूह का एक साया हूं मैं।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर फिर से आपसे मिलेंगे कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित

निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता

0: परीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने चार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र अफ्रीका सीडीसी ने कांगो में फैल रहे इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत द्वारा भेजी गई आपातकालीन दवाओं और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। इस सहायता में जांच किट, दवाएं, संक्रमण रोकथाम सामग्री और मरीजों के रोग उपचार से जुड़ी जरूरी सामग्री शामिल है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration support, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement regarding Cabinet's decision while briefing media in New Delhi. The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. Prime Minister Narendra Modi has said the government is committed to ensure that food grains reach every needy person in the country on time through PDS. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure immeasurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi yesterday, Mr. Modi asked the states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants.

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपके साथ अंजू, कार्यक्रम लेकर आए हूँ गीत सुहाने। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिस तरफ तू है उधर होंगी सभी की नजरें, जिस तरफ तू है उधर होंगी सभी की नजरें, ईद के चांद का दीदार का बहाना ही सही।

जरा मुस्कुराकर चमन में तो आओ, जरा मुस्कुराकर चमन में तो आओ, कि ये फूलों के चेहरे भी फिजा चाहते हैं।

नजरों का धोखा है या भोली है तुम्हारी सूरत, नजरों का धोखा है या भोली है तुम्हारी सूरत, कि इस कम से उम्र में भी गजब की कयामत हो तुम।

क्यों किसी से इतना प्यार हो जाता है कि एक दिन का इंतजार भी दुश्वार हो जाता है। अपने भी लगने लगते हैं पराए जब एक अजनबी जिस पर बहुत एतबार हो जाता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

एक शाम आती है तुम्हारी याद लेकर और एक शाम जाती है तुम्हारी याद देकर। कब आएगी वो शाम जो आए तुम्हें अपने साथ लेकर।

पुरानी धुनों को भूल चुका था ये दिल मेरा, पुरानी धुनों को भूल चुका था ये दिल मेरा, आज तूने फिर पुकारा तो फिर इन गीतों को दोबारा से जीना आ गया।

मेरी मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ की मोहताज नहीं, मेरी मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ की मोहताज नहीं, ये वो एहसास है जो मेरी रूह तक उतर गया है।

खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं और सामने।

दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से आपसे मिलेंगे कार्यक्रम रात समय लेकर। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा है कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग

0: कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के

0: न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक जिमनिक में भाग लेने के लिए साइप्रस पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष काजा कल्लास और साइप्रस के विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस को नियंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सौंप दी है। रिपोर्ट में विवाह, तलाक, भरण पोषण, बच्चों की देखरेख और संपत्ति में अधिकार जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें मुस्लिम महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानूनों की भी समीक्षा की गई। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration support, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Support on Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement regarding Cabinet's decision while briefing media in New Delhi. The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 3081.35 crore persons covered under National Food Security Act. Prime Minister Narendra Modi has said the government is committed to ensure that food grains reach every needy person in the country on time through PDS. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi yesterday, Mr. Modi asked the states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power, road sectors, covering 9 states and worth around 30,000 crore rupees. While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasized that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led multimodal development where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. while reviewing

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 2 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का और मैं हूँ आपके साथ अंजू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जब से देखा तुम्हें इन आंखों ने, दिल बस तेरा ही दीवाना हो गया। अब किसी और की तमन्ना नहीं हमें, तुम्हें सोचना ही जीने का बहाना हो गया।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

तेरी तो हर अदा हर बात मेरे लिए बहुत खास है, तेरी हर अदा हर बात मेरे लिए खास है, शायद यही प्यार का पहला एहसास है।

मेरे दिल की हर धड़कन, मेरे दिल की हर धड़कन सिर्फ तेरा ही नाम लेती है। मेरे दिल की हर धड़कन सिर्फ तेरा ही नाम लेती है, क्योंकि मेरी मोहब्बत का आगाज़ भी तुम और अंजाम भी तुम हो।

दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर आपके साथ रहेंगी माधुरी, कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा है कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को

0: कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंद्र अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। विदेश मंत्री डॉ. S. जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिविहा से मुलाकात की। दोनों ने

0: बांग्लादेश सीमा पर कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिविहा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन संघर्ष और स्थायी शांति के प्रयासों पर चर्चा की। यह बैठक साइप्रस में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक जिमनिक फोरम के दौरान हुई। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र अफ्रीका सीडीसी ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में फैल रहे इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत द्वारा भेजी गई आपातकालीन दवाओं और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। इस सहायता में जांच किट, दवाएं, संक्रमण रोकथाम सामग्री और मरीजों के उपचार से जुड़ी जरूरी सामग्री शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में मिशन क्वीन पाइनएप्पल का शुभारंभ किया। लगभग 200 करोड़ रुपए की इस पहल का उद्देश्य जीआई टैग प्राप्त त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल की खेती, पाइनएप्पल की गुणवत्ता तथा कीमत को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades, till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle of award period with an outlay of 25,530 crore rupees, a central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi. The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. Prime Minister Narendra Modi has said the government is committed to ensure that food grains reach every needy person in the country on time through TDS. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi yesterday, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management-related infrastructure, including waste processing plants and Gobar Dhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power, road sectors covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasized that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led multimodal development where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. While reviewing Ken-Bethwa River interlinking project, Prime Minister observed that Ken-Bethwa project should serve as a model for other states to resolve interstate water issues through cooperation, timely clearances, technology-based monitoring and mission mode execution. The Prime Minister also underlined that the delay in the implementation of public

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं आप, और ये सफर जिसका नाम है हमराही, लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। तो हमराही कौन होते हैं दोस्तों? जब रास्ता मिल जाते हैं और रास्ते में कुछ लोग मिल जाते हैं, हम सफ़र हो जाते हैं, हम राह हो जाते हैं, तो वो हमराही कहलाते हैं। और हमराही कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं हमारे बॉलीवुड के डुएट सॉन्ग्स, युगल गीत। तो आनंद लीजिए।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

भाई कह देने में फायदा है, क्योंकि दिल की बात अगर दिल में रह गई तो सामने वाले को कैसे पता लगेगी। जैसे अब हम बता रहे हैं कि ये जो गीत सुना आपने, ये सुना फिल्म दीवार से किशोर कुमार आशा जी की आवाज में और संगीत आर डी बर्मन साहब का। और अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म अभिमान से।

आशा और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत सुना आपने फिल्म यादों की बारात से, आर डी बर्मन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोल। वही कारवां, वही रास्ते, वही जिंदगी, वही मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।

ये गीत सुना आपने फिल्म आ गले लग जा से किशोर और लता की आवाज़ों में। और अगला गीत हम आप तक पहुंचाएं, उससे पहले एक शेर भी पहुंचाना चाहते हैं, या कहें कि एक बात कहना चाहते हैं कि वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे। तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था?

हीरा पन्ना फिल्म से गीत सुन रहे थे आप लता और किशोर की आवाज़ में, और समझती हूँ कि आपको ये गीत भी बेहद पसंद आया होगा। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद

0: रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉनस्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही के इस सफर में माधुरी है आप सभी के साथ। मैं कैसे मनाऊं उसे वो नादां है बहुत, मैं कैसे मनाऊं उसे वो नादां है बहुत, गुस्सा करके मुझसे खुद भी परेशान रहता है।

रामपुर का लक्ष्मण इस फिल्म का गीत सुन रहे थे आप किशोर और लता की आवाज़ में, आरडी बर्मन के संगीत से सजा ये गीत आप तक हमने पहुंचाया। और खजा को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। और मोहब्बत करने वालों का तो यही

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है। पश्चिम

नेपाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में आतंकरोधी दस्ते और विशेष कार्यबल ने संयुक्त कार्रवाई करके पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राज्य में कानून व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश ने बताया कि चारों आरोपियों को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में आरोपियों के सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में होने का पता चला। ये सभी संवेदनशील स्थलों

0: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा लेकर माधुरी है आज की सुबह आप सभी के साथ। नमस्कार।
1: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना

दुख तो अपना साथी है ही, लेकिन दुख ये भी कहता है कि चाहे रात जितनी भी लंबी हो, दुख की सुबह जरूर आती है, खुशियां जरूर लाती है।

मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीवन तो यही है। जीवन में जहाँ रात है वहाँ दिन है, शाम है तो सुबह है, पहाड़ हैं तो पठार भी हैं, और यही जिंदगी की रीत है कि खुशी आती है, गम आता है, और फिर से एक बार अपनी मेहनत से इंसान खुशियों को समेट लाता है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। सुबह के 4:25 और हो चुके हैं पूरे 46 सेकेंड। ये सफर है अरुणिमा का। जीवन में जब भी कभी मौका मिले तो आप सारथी चुनिएगा, स्वार्थी नहीं।

बूढ़ों पर गुस्सा हम सभी को आता है, पर जिसने अपने क्रोध पर अंकुश नहीं लगाया उसे नियति उससे पहले पराजित करती है। तो गुस्सा तो आता है, लेकिन उस पर अंकुश भी जरूरी है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

जी आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये सफर है अरुणिमा का। याद रखिए, इंतजार करने वालों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन हाँ, जो कोशिश करते हैं उन्हें सब कुछ मिलता है।

0: कभी कभी।
1: दिल से हार न मानने का वादा खुद से कर लीजिए, फिर देखिए कैसे आपको मंजिल मिलती है।

रहे। कुछ न कुछ बात तो हम सभी में होती है, गलत लोग सबक बन जाते हैं, अच्छे लोग याद बन जाते हैं, और आप क्या बनते हैं ये तो आपके हाथ में है।

हर उम्मीद की एक छोटी सी कहानी होती है, और ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो खुद को तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी और के बारे में सोचने का वक्त ही ना मिले। और जब फूलों की तमन्ना होती है तो ज़रूर हमें कुछ न कुछ कांटे भी चुभते ही हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किया जाए। नई दिल्ली में 91वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजना को तेजी से पूरा करने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। सिक्किम ये पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश का 15वां और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन जाएगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दी जाने वाली सर्वोच्च औपचारिक उपाधि है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में सिक्किम पुलिस के 400 गौरवशाली जवान राष्ट्रपति के समक्ष परेड में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का 3रा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर चौकियां स्थापित करने और कांटेदार तार की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को 142.79 एकड़ जमीन सौंप दी है। ये निर्णय पहली मंत्रिमंडल बैठक में तय किए गए उस लक्ष्य का हिस्सा है जिसके अंतर्गत 45 दिनों के भीतर कुल 600 एकड़ जमीन हस्तांतरित की जानी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार ने संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में BSF चौकियों और कटीले तारों की बाड़ के निर्माण की गति देकर सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के ठोस कदम उठाए हैं। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा है।

राज्य में सीमा के लगभग 1600 किलोमीटर हिस्से पर बाड़ लगाई जा चुकी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति के मद्देनजर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और देखिए ना, बाहर भोर हो चुकी है। भोर सुहानी लेकर माधुरी है आप सभी के साथ, और माधुरी कहती है आप सभी को सुप्रभात।

0: सत्य सच जिससे जीवन सुखद और शांत होता है। हम सभी एक दूसरे से सत्य सुनना चाहते हैं, पर सत्य सुनना जितना चाहते हैं उतना सत्य हमें कहना भी होता है। और ये सच है कि हर व्यक्ति का अपना अपना सच होता है।
1: मैंने

जी हाँ, हर किसी का अपना सच है। ये जरूरी नहीं कि जो हमारा सच है वो सभी के मानकों पर खरा उतरे, और ये भी जरूरी नहीं कि सबका इस संसार को देखने का अपना तरीका है। तो इसीलिए सबका सच भी अपने अपने तरह का सच है। ये अलग अलग नजरिया ही हमारे सच को अलग अलग कर देता है। इसी आधार पर सब अपने सत्य की परिभाषा बनाते हैं, गढ़ते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा सच है कि हम सभी सच ही तो सुनना चाहते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं और ये सफर है भोर सुहानी का। समय हो गया है 5:33 और 10 सेकेंड। हम आज बात कर रहे हैं सत्य की। वैसे तो सत्य और असत्य में बहुत सारे भेद हैं, पर देखा जाए तो सत्य अनंत है, लेकिन झूठ की एक सीमा होती है जिसके पास पहुंचने पर वो बेनकाब हो जाता है। सत्य हो सकता है तकलीफ दे हो, पर असत्य पहले सुंदर होता है और बाद में उससे तकलीफ होती है।